0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूँ आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है, साथ ही साथियों हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का।
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जो नदिया है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जो है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा अमरा हित भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रे हो आपू सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि आपणे मिश्रित खेती नो हूँ महत्व है ने आ खेती आपणे हेते करी शका। तो आना विषय माते भाई बोनो अमारी आप तक की कार्यक्रम में घणा कनी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपणी वाते। तो भाई बोनो आप हमरते रहेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: और ये क्यों जरूरी है? नहीं सर, अब हम हमारे श्रोता साथियों को मिश्रित खेती के लाभ के बारे में बताना चाहेंगे। तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख लाभ हैं जो मिश्रित खेती करने से हमें मिलते हैं?
1: जी, तो देखिए मिश्रित खेती की बात करते तो सबसे पहले फसल, अगर फसल में आपकी विविधता होगी, अलग अलग फसलें होगी तो आपको अलग अलग आय के स्रोत होंगे, जिसमें आपके खाने के लिए होगी और कुछ बेचने के लिए भी होगी। दूसरा हम देखते हैं कि आपके पास पशुपालन है तो आपका दूध का उत्पादन होगा, आपके पास सब्जी है तो आप घर में खाएंगे और अतिरिक्त होगी उसको आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर मुर्गी पालन होगा तो अंडे और मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, वो आप सेल भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। तो इसके अलावा इनसे क्या है कि एक अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, सबसे मुख्य जो लाभ वो ये है। दूसरा है कि पोषण की दृष्टि से हम देखते हैं तो परिवार की पोषण सुरक्षा है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें जैसे अनाज है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, अंडे हैं, दूध है, तो ये सारे जो मिलके हैं जो संतुलित भोजन बनाते हैं और वो भोजन वो अपने थाली में होगा तो आपके परिवार को जो भोजन मिलेगा उससे कई प्रकार की बीमारियां हैं या आपके जो कुपोषण जैसी समस्याएं हैं वो आपके आसपास भी नहीं आएगी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये पोषण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है खेत के लिए हम देखते हैं तो जितना जो हमारी हेल्थ होती है, हमारा स्वास्थ्य होता है, वैसे मृदा का भी एक स्वास्थ्य होता है।
0: जी जी।
1: तो उसकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत लाभदायक होती है क्योंकि जो आप मिश्रित खेती करते हैं, जैसे गोबर प्राप्त हो रहा है तो आपको खाद मिल जाएगा, आपका कचरा हो रहा है तो आपकी मल्चिंग या फिर आपके खेत में जो है उसका खाद मिल जाएगा, आप जो अलग अलग प्रकार की अगर फसलें करते हैं तो कार्बन की जो मात्राएं हैं वो आपकी मिट्टी में बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, आप जैविक तरीके से हम जब करते हैं तो मिट्टी का पोषण बढ़ता है और उससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मिट्टी की उर्वरता के लिए मिश्रित खेती करनी चाहिए।
0: जी जी।
1: इसके जो साथ में है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो है हमारा संसाधन कि अगर आप मिश्रित खेती करते वो भी हमारे परंपरागत तरीके से।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो जलवायु परिवर्तन है उस पे जो प्रभाव है गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस दृष्टि से आपकी फसल को या मिश्रित खेत को नुकसान भी नहीं होगा।
0: जी जी।
1: तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि हम परंपरागत और प्राकृतिक संसाधन है उनका बेहतर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मिश्रित खेती की बात करते हैं तो बैल आपके पास होंगे, पशु आपके पास होंगे, आप उससे खाद बना के डालेंगे, इसके साथ में जो है आपके अलग अलग प्रकार की जो चीजें होंगी वो होगा, तो आपके जो है बाहरी संसाधन इसमें नहीं होंगे क्योंकि बाहरी संसाधन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, गाय है, मुर्गियां हैं, तो ये सब अगर है तो उसमें आपको बाहरी निर्भरता खत्म हो जाएगी।
0: जी जी।
1: दूसरा है कि जैसे हमने बात की थी कि वाई डाइवर्सिटी, जैव विविधता, कि हमारे शरीर को और हमारे जो क्लाइमेट को है वो जैव विविधता बहुत जरूरी है, उसको बचाना हमारे लिए जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: तो जब हम मिश्रित खेती करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि जो जैव विविधता वो काफी हो जाती है हमारे पास और उससे पोषण के साथ साथ में हम पूरे क्लाइमेट का भी रक्षा करते हैं, तो ये भी जरूरी है। दूसरा है कि कम लागत, जब हम मिश्रित खेती करते हैं तो हमारी लागत है वो बहुत कम होती है।
0: जी जी।
1: क्योंकि आपको बाहर से खाद बीज नहीं लाना पड़ेगा, आपको दूध नहीं लाना पड़ेगा, आपको सब्जियां नहीं लानी पड़ेगी, आपको फल नहीं लाने पड़ेंगे, तो अगर ये सब नहीं लाएंगे तो आपकी आय में बचत होगी और आपकी जो बचत है वो बढ़ेगी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि सर आप हमें बता रहे हैं कि मिश्रित खेती के कई सारे लाभ हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी।
0: यही सर, मिश्रित खेती में क्या क्या शामिल किया जा सकता है?
1: देखिये, जब हम नाम लेते हैं मिश्रित खेती तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारी कुछ चीजें होगी जिसका मिश्रण होगा, तो यहाँ पे आप अनाज है, दालें हैं, तिलहन की खेती है, इसमें आपकी पोषण वाटिका है जिसमें सब्जियां हैं, फलदार पौधे हैं जैसे बहुउद्देशीय पौधे हैं वो आप लगा सकते हैं, गाय भैंस बकरी है, भेड़ है, मुर्गियां हैं या बतख पालन, और कई जो क्षेत्र है वहाँ पे जैसे मधुमक्खी पालन होता है।
0: बिल्कुल।
1: और अलग अलग प्रकार का चारा उत्पादन और हमारे जो गोबर खाद से बर्मी कंपोस्ट करना, उकेड़ा जो है खाद बनाना, जल संरक्षण जैसे खेत तालाब की हम बात करते हैं, स्थानीय बीजों का संरक्षण जो हम बात करते हैं कि हमारे परंपरागत बीज है वो जलवायु से लड़ने में काफी सक्षम होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इन सारी चीजों को हम जो है मिश्रित खेती में शामिल कर सकते हैं।
0: जी हाँ। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को बताया है, ये समुदाय इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं अपनी?
1: समुदाय की हम बात करें तो इसमें बात ये है कि जैसे प्रत्येक परिवार है कम से

0: पांच से सात प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाए,
1: बिल्कुल,
0: तो ये आपका एक प्रयास रहेगा, तो इससे आपकी घर की पोषण सुरक्षा बढ़ेगी। इसके साथ में पोषण वाटिका विकसित करें ताकि बाहरी निर्भरता आपकी खत्म हो जाए।
1: जी हाँ।
0: और वो पूरे समुदाय स्तर पर आप इसको करें। इसके साथ ही है जो पशुपालन और जो हम बात करते हैं जैविक खाद है उसका निर्माण करें, आप चाहे उकेड़े के माध्यम से करें चाहे बर्मी कंपोस्ट करें।
1: बिल्कुल।
0: वर्षा जल का संरक्षण इसमें शामिल किया जा सकता है। रासायनिक खेती की जो निर्भरता उसको बिल्कुल कम करें और जैविक को बढ़ावा दें हमारे क्षेत्र में, हमारे समुदाय में, हमारे परिवारों में, और हमारे जो सीख और अनुभव है वो एक दूसरे के साथ साझा करें।
1: बिल्कुल।
0: ताकि हर परिवार जागरूक होके इस प्रणाली को अपनाए।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें ढेर सारी हो गई हैं, अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि मिश्रित खेती केवल एक कृषि करने का ही पत्ती नहीं है, इसमें हमारे समग्र जीवन शैली है और किसान के लिए आर्थिक सामाजिक हर दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, और हम जलवायु को बचाने का एक प्रयास करते हैं, तो मैं कहूंगा सभी किसान भाई इसको अपनाएं और हमारी आपकी पोषण सुरक्षा और जैव विविधता को भी बचाएं।
1: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: ભાઈ બોનું જેમ કે આપણે આપણે વેસમાં માંગીલાલજી જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। એણે આપણને બતાડ્યું કે મિશ્રિત ખેતી હું કહેવાય હે, આ કેમ જરૂરી હે, આંત કે આપણને કયા કયા લાભ થાય હે ને મિશ્રિત ખેતી મેં આપણે કઈ કઈ ચીજોને શામિલ કરી શકો। તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લઈ કોર ગીત ને મોરે પડો સૂટા।

भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बच्चों को डिजिटल दुनिया से सुरक्षित कैसे रखें।
0: बिल्कुल,
1: जरा सोचिए श्रोता साथियों कि आज हमारे बच्चों की दुनिया कितनी बदल गई है। कभी बच्चे खेल के मैदान में दोस्तों के साथ समय बिताते थे, किताबों में कहानियां खोजते थे और दादा दादी से किस्से सुनते थे। आज कशिश उनके हाथ में मोबाइल है, सामने इंटरनेट की दुनिया है और एक क्लिक पर पढ़ाई, खेल, वीडियो, मनोरंजन और न जाने कितनी जानकारी उपलब्ध है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है कि क्या हमारा बच्चा डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करना सीख रहा है या डिजिटल दुनिया धीरे धीरे हमारे बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करने लगी है।
0: जी हाँ,
1: क्या बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है हमें पता है? क्या वह अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन बात कर रहा है? क्या वह अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा तो नहीं कर रहा? क्या पढ़ाई के नाम पर मोबाइल हाथ में लेकर घंटों वीडियो या गेम तो नहीं खेल रहा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारा बच्चा किसी ऑनलाइन परेशानी में फंसने पर हमसे बेझिझक बात कर पाएगा? तो साथियों, डिजिटल दुनिया अपने आप में बुरी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: इंटरनेट बच्चों के लिए ज्ञान, शिक्षा, रचनात्मक और नए अवसरों का बड़ा माध्यम बन सकता है। लेकिन कशिश, समस्या तब शुरू होती है जब बच्चों को इसके सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: और बड़े केवल मोबाइल छीनने और डांटने को समाधान समझ लेते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना शुरुआत यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ पहले करें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं। साथियों, विषय है बच्चों को डिजिटल दुनिया से सुरक्षित कैसे रखा जाए।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले बहुत सारी बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई थी, यही अब जानते हैं कि डिजिटल दुनिया बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
1: जी जी,
0: तो श्रोता साथियों, आज मोबाइल और इंटरनेट केवल मनोरंजन के साधन नहीं रह गए हैं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं, विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में जान सकते हैं। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: साथ ही चित्रकारी और संगीत सीख सकते हैं और अपनी रचनात्मकता को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए तो डिजिटल माध्यम कई बार ऐसी जानकारियों तक पहुँच का रास्ता बन सकता है जो उनके आस पास आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन अंजलि जी, जिस तरह सड़क पर चलते समय यातायात के नियम जानना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट इस्तेमाल करते समय भी कुछ डिजिटल सुरक्षा नियम जानना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बच्चों को केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है साथियों कि मोबाइल मत चलाओ, बल्कि उन्हें ये भी समझाना जरूरी है कि मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, यही कशिश अब बात आती है माता पिता की भूमिका की। श्रोता साथियों, बच्चों के डिजिटल व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले माता पिता को उनके साथ दोस्ताना रिश्ता बनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: अगर बच्चा यह सोचता है कि मोबाइल पर कुछ गलत हो जाने पर बताने से उसे डांट पड़ेगी या मोबाइल हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा, तो वह समस्या छिपा सकता है। इसलिए माता पिता बच्चों से नियमित रूप से पूछें, क्या आप इंटरनेट पर क्या नया देख रहे हैं, कौन सी चीज मिली जो तुम्हें समझ नहीं आई, किसी ने ऑनलाइन तुमसे बात की। ऐसे सवाल पूछने का उद्देश्य श्रोता साथियों बच्चों की जासूसी करना नहीं है, बल्कि उनके लिए ऐसा माहौल बनाना है जहां वह किसी परेशानी में सबसे पहले परिवार के पास आए।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के बच्चों को बहुत छोटी उम्र से समझाना चाहिए कि इंटरनेट पर हर जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है। उन्हें हमें बताना है कि अपना पूरा पता, फोन नंबर, स्कूल की पूरी जानकारी, पासवर्ड, निजी तस्वीरें, पहचान से जुड़ी जानकारी, परिवार की निजी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा न करें।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को यह भी समझाएं कि इंटरनेट पर कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा या दोस्ताना दिखाई दे, इसका मतलब यह नहीं कि वह वास्तव में वही व्यक्ति है जो वह खुद को बता रहा है।
0: बिल्कुल,
1: बड़े बच्चों को मजबूत पासवर्ड रखने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि पासवर्ड किसी दोस्त या ऑनलाइन जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। जहां संभव हो खातों में अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा का इस्तेमाल करें। बच्चों को यह भी बताएं कि किसी लिंक, संदेश और वेबसाइट पर जाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: एक छोटा सा नियम बच्चों को जरूर सिखाएं कि पासवर्ड निजी है, इसे साझा नहीं करना है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों ऑनलाइन गेमिंग सावधानी की, तो आज बच्चों में ऑनलाइन गेम बहुत ही लोकप्रिय है। अंजलि जी, खेलना अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन गेमिंग के दौरान भी सावधानी बहुत जरूरी होती है।
1: बिल्कुल,
0: साथियों बच्चों को ये समझाएं कि गेम में किसी अनजान व्यक्ति से व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की जा सकती, किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी व्यक्ति के कहने पर पैसे खर्च नहीं करने हैं, और सबसे जरूरी गेम खेलने के लिए तय समय का पालन करना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि गेम में हारना या जीतना वास्तविक जीवन की सफलता का पैमाना नहीं होता। मोबाइल की सबसे बड़ी समस्या कई बार उसका गलत उपयोग नहीं बल्कि उसका ज्यादा उपयोग होता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चा लगातार स्क्रीन पर रहता है तो उसके खेल, पढ़ाई, परिवार के साथ बातचीत, नींद और अन्य गतिविधियों का समय भी इससे प्रभावित हो सकता है। इसलिए परिवार में स्क्रीन के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए।
1: जी जी,
0: जैसे कि खाने के समय मोबाइल यूज नहीं करना है, पढ़ाई के समय केवल जरूरी डिजिटल सामग्री का ही उपयोग करना है, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनानी है, हर दिन कुछ समय बाहरी खेल के लिए निकालना है और परिवार के साथ बातचीत का समय भी सुनिश्चित करना है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, श्रोता साथियों को हम ये बताना चाहेंगे कि नियम केवल बच्चों के लिए नहीं होने चाहिए। अगर माता पिता खुद हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे और बच्चों को कहेंगे कि मोबाइल मत चलाओ, तो बच्चा बात से ज्यादा व्यवहार से सीखेगा।
1: बिल्कुल कशिश, आपने

0: ना कि किस तरीके से हमें बच्चों को डिजिटल दुनिया से अवगत करवाने की जरूरत है और कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो बच्चों को हमें बचपन से ही सिखानी है।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें हमने ढेर सारी बातें जानी। गीत से पहले यही बात आती है, अनजान लोगों से ऑनलाइन दोस्ती में सावधानी। जी हाँ दोस्तों, बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। इंटरनेट पर उन्हें कोई दोस्ताना व्यक्ति मिलता है तो वे जल्दी बातचीत शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें हमें समझाना होगा कशिश कि ऑनलाइन मिला व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसका वास्तविक दोस्त हो। अगर कोई व्यक्ति निजी जानकारी मांगता है, फोटो मांगता है, मिलने के लिए कहता है, धमकाता है, डराता है या कोई बात छिपाने के लिए कहता है तो बच्चों को तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि मुश्किल परिस्थितियों में सच बताने पर उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, बच्चों को समझाएं कि इंटरनेट पर डाली गई तस्वीर या वीडियो आगे कहां तक पहुंच सकता है उसका अंदाजा लगाना हमेशा आसान नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अपनी या किसी दूसरे बच्चे की निजी तस्वीर बिना अनुमति साझा न करें। किसी की फोटो का मजाक बनाकर उसे आगे भेजना भी सही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को यह भी समझाना चाहिए कि ऑनलाइन भी वही सम्मान हमें रखना है जो हम आमने सामने रखते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथी श्रोता साथियों, हर ऑनलाइन जानकारी सच नहीं होती, ये भी हम अपने बच्चों को बताएं। जैसे कि इंटरनेट पर बहुत सारी उपयोगी जानकारी है लेकिन हर जानकारी सही नहीं होती साथियों।
0: जी जी।
1: बच्चे कोई खबर, वीडियो या दावा देखे तो उन्हें तुरंत विश्वास करने के बजाय सवाल पूछने की आदत आपको डलवानी चाहिए। जैसे कि ये जानकारी कहाँ से आई है, क्या यह विश्वसनीय स्रोत है, क्या किसी दूसरे भरोसेमंद स्रोत से भी इसकी पुष्टि हो सकती है। अंजलि जी, यही आदत बच्चों को गलत जानकारी और भ्रामक सामग्री से बचाने में मदद करेगी।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया में बच्चों को ऑनलाइन परेशान किया जाना एक गंभीर समस्या बन चुकी है। किसी बच्चे का मजाक उड़ाना, उसे अपमानित करना, उसके बारे में गलत गलत बातें फैलाना, बार बार परेशान करने वाले संदेश भेजना, यह उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है साथियों।
0: जी जी।
1: अगर बच्चा अचानक मोबाइल से दूर रहने लगे, चिड़चिड़ा हो जाए, स्कूल या दोस्तों से दूरी बनाने लगे या किसी ऑनलाइन घटना के बाद बहुत परेशान दिखाई दे तो माता पिता को उसे प्यार से समझाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसकी वजह से तुम्हें चुप रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ इंटरनेट पर बच्चे के सामने ऐसी सामग्री भी आ सकती है जो उसकी उम्र के लिए उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे डराने या शर्मिंदा करने के बजाय शांत रहकर समझाइए। बच्चों को बताएं कि गलत सामग्री दिखाई देना हमेशा उसकी गलती नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उसे आगे साझा नहीं करना चाहिए। उस पेज या खाते से दूर हो जाना चाहिए और भरोसेमंद बड़े को बताना चाहिए। माता पिता उम्र के अनुसार सुरक्षित खोज सामग्री नियंत्रण की सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं। श्रोता साथियों, डिजिटल सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार केवल तकनीकी नियंत्रण नहीं बल्कि बच्चे और माता पिता के बीच विश्वास है।
1: बिल्कुल,
0: हर दिन कुछ समय ऐसा रखें जहां बच्चा खुलकर बात कर सके। पूछे कि आज इंटरनेट पर तुम्हें क्या अच्छा लगा, कोई चीज परेशान करने वाली मिली, किसी ने ऐसा कुछ कहा जिससे तुम्हें असहज महसूस हुआ हो, और जब बच्चा कोई समस्या बताए तो पहले उसकी बात सुने।
1: बिल्कुल,
0: कई बार बच्चों को समाधान से पहले यह भरोसा चाहिए होता है कि कोई उसकी बात समझने वाला है। तो श्रोता साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें बच्चों को बताने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ कहना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया आज हमारे जीवन का हिस्सा है और हमारे बच्चे इससे पूरी तरह अलग रह नहीं सकते, बल्कि समझदारी जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करना हमें बच्चों को सिखाना है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कशिश हमारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे के हाथ से हर समय मोबाइल छीन लिया जाए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मोबाइल उसके हाथ में हो लेकिन उसका नियंत्रण उसके समझदारी के पास हो।
1: जी हाँ।
0: बच्चों को केवल खतरे बताने से वह सुरक्षित नहीं होगा, उसे यह भी सिखाना होगा कि सही और गलत में फर्क कैसे करें, किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, अपनी निजी जानकारी की कीमत क्या है और परेशानी आने पर चुप रहने के बजाय मदद क्यों मांगनी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि साथियों, बच्चों को आप ये विश्वास दे कि डिजिटल दुनिया में कोई गलती या परेशानी हो जाए तो वो अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े के पास बिना डर के जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षा केवल तकनीक से नहीं आती अंजलि जी, सजगता और समझदारी के साथ साथ संवाद से भी आती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में साथियों हम बच्चों को डिजिटल दुनिया से डराए नहीं बल्कि उन्हें उसका समझदार उपयोगकर्ता बनाए।
0: बिल्कुल, तो कशिश इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन

0: कृपया साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, जरूरत से ज्यादा सोच विचार न करें, काम पर ध्यान दें और उसका आनंद लें। श्रोताओं, युवा अवस्था जीवन का वो दौर है जब हमारे सामने सपने भी होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे रास्ते भी, पढ़ाई, करियर, नौकरी, व्यवसाय, रिश्ते, भविष्य और समाज, इन सभी को लेकर हमारे मन में तरह तरह के सवाल चलते रहते हैं। सोचना स्वाभाविक है और सही निर्णय लेने के लिए सोच विचार जरूरी भी है।
0: जी जी।
1: लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब सोच विचार हमारी तैयारी का हिस्सा न रहकर चिंता का कारण बन जाता है।
0: जी हाँ।
1: तो आज हम बात करेंगे इसी विषय को लेकर कि सोचिए जरूर, लेकिन इतना नहीं कि सोचते सोचते काम करने का समय ही निकल जाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस विषय को लेकर बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाकर हम दोस्तों को पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ हम करें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ चुका है कि हम बात कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सोच विचार हमें नहीं करना है बल्कि हमारे काम पर ध्यान देना है और उसका आनंद लेना है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले एक बहुत अच्छी बात हमारे युवा साथियों को बताई थी कि सोचिए जरूर, लेकिन इतना नहीं कि सोचते सोचते काम करने का समय ही निकल जाए।
1: बिल्कुल
0: साथियों, कई बार हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके परिणामों के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि काम शुरू ही नहीं कर पाते। मन में ढेर सारे सवाल आते हैं, जैसे कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूँ, अगर मेरी मेहनत का परिणाम मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। साथियों, ऐसे सवाल बार बार मन में घूमते रहते हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि सोच विचार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी परीक्षा की तैयारी करनी है तो योजना बनाना भी जरूरी है। कोई करियर चुनना है तो उसके बारे में जानकारी लेना भी जरूरी है। कोई नया काम शुरू करना है तो उसके फायदे नुकसान समझना भी जरूरी है। लेकिन एक सीमा के बाद वही सोच हमें आगे बढ़ने के बजाय रोकने लगती है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए श्रोताओं की। मान लीजिए किसी युवा को भाषण देना है, अब वो सोचता है कि उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किन बातों का ध्यान रखना है। ये सकारात्मक सोच है, लेकिन अगर वो बार बार यही सोचता रहे अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेरी आवाज काम गई तो, और इसी डर के कारण तैयारी के बावजूद मंच पर जाने से बचने लगे, तो ये जरूरत से ज्यादा सोच विचार है।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए श्रोताओं, सोच हमें रास्ता दिखाए लेकिन रास्ते पर चलना हमारा काम है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि युवा साथियों के सामने अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वे भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं। साथियों, हम चाहते हैं कि हमें पहले से पता हो कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जिंदगी कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका अगला पन्ना पहले ही पढ़ लिया जाए।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम पूरी मेहनत कर सकते हैं, अच्छी योजना बना सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमारे नियंत्रण में है। दोस्तों, परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में जरूर होता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारे युवा साथी विद्यार्थी हैं तो श्रोता साथियों, आपका काम है पढ़ाई करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और नियमित अभ्यास करना। परीक्षा में क्या परिणाम आएगा इसकी चिंता करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा।
1: बिल्कुल कशिश, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका काम है सही दिशा में मेहनत करना। हर दिन ये सोचते रहना कि नौकरी मिलेगी या नहीं आपकी ऊर्जा कम कर सकता है। इसके बजाय आज क्या पढ़ना है, कितना अभ्यास करना है और अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाना है, इस पर हमें ध्यान देना है। कई युवा किसी काम को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। वे सोचते हैं कशिश कि थोड़ा और सीख लूं, फिर करूंगा, पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लूं, फिर कोशिश करूंगा, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तब शुरुआत करूंगा। लेकिन कई बार सही समय का इंतजार करते करते शुरुआत का समय ही निकल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हर काम शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता श्रोताओं, शुरुआत करने के बाद ही अनुभव मिलता है। अनुभव से गलतियां समझ आती है और गलतियों से सुधार का रास्ता मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए किसी काम को शुरू करते समय श्रोताओं, खुद से ये मत पूछिए कि क्या मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बल्कि ये पूछिए कि क्या मैं शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। अगर जवाब हाँ है तो पहला कदम जरूर उठाइए।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही जब हमारा ध्यान श्रोता साथियों एक साथ बहुत सारी चीजों में बढ़ जाता है तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचते हैं और वर्तमान काम का आनंद नहीं ले पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, लेकिन साथ ही मोबाइल, सोशल मीडिया, भविष्य, दोस्तों और दूसरी चिंताओं के बारे में भी सोच रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में साथियों आपका शरीर किताब के सामने बैठा है लेकिन आपका मन कहीं और घूम रहा है। इसलिए एक समय में एक काम पर ध्यान देने की आदत बहुत महत्वपूर्ण होती है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: जब पढ़ाई करे साथियों तो पढ़ाई पर ध्यान दे, जब कोई रचनात्मक काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह जुड़ जाएं, जब परिवार के साथ हो तो उस समय को परिवार के साथ बिताएं, और जब आप आराम कर रहे हो तो बेवजह अपराध बोध महसूस न करें।
1: बिल्कुल,
0: काम को केवल जिम्मेदारी समझकर करना जरूरी है। जागृति जी, उसमें रुचि और आनंद खोजना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे श्रोता साथियों के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो बात कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा सोच विचार न करें, काम पर ध्यान दें और उसका आनंद लें।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हम बात कर रहे थे, जरूरत से ज्यादा सोच विचार न करें, काम पर ध्यान दें और उसका आनंद ले विषय को लेकर। यही हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं, कि हम अक्सर सफलता को केवल परिणामों से जोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें लगता है कि अच्छे नंबर आए तो सफलता, नौकरी मिली तो सफलता, पुरस्कार मिला तो सफलता, लेकिन सफलता की यात्रा में मिलने वाले छोटे छोटे अनुभव भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम कोई नया हुनर सीख रहे हैं तो हर दिन थोड़ा बेहतर होना भी उपलब्धि है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें नई चीज सीखना भी उपलब्धि है। अगर हमने अपनी किसी पुरानी कमजोरी पर काम किया है तो ये भी सफलता है।
1: जी जी।
0: जब हम केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देते हैं तो पूरी यात्रा तनावपूर्ण लग सकती है, लेकिन जब हम प्रक्रिया को समझते हैं और उसका आनंद लेते हैं तो वही यात्रा खूबसूरत बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम आपको कहना चाहेंगे साथियों कि काम को बोझ नहीं, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि आज सोशल मीडिया के दौर में तुलना करना बहुत आसान हो चुका है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हम दूसरों की सफलता देखते हैं और अपने जीवन को उससे जोड़ने लगते हैं। जैसे कि किसी की नौकरी लग गई, कोई अपना व्यवसाय शुरू कर चुका है, किसी को पुरस्कार मिल गया है, कोई विदेश चला गया है, इन सबको देखकर हम सोचने लगते हैं कि मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है जागृति जी, कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें दूसरों के जीवन के दिखाई देने वाले हिस्से की तुलना अपने पूरे जीवन से नहीं करनी चाहिए। साथियों, आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी और से आगे निकले, बल्कि आपका लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि आप कल से आज बेहतर बने।
0: बिल्कुल, और जरूरत से ज्यादा सोचने की एक बड़ी वजह असफलता और गलती का डर भी है कशिश। लेकिन गलती जीवन का अंत नहीं है श्रोताओं, गलती हमें बताती है कि किसी काम को अगली बार बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है।
1: जी,
0: युवाओं की समझना बहुत जरूरी है कि गलती करने से ज्यादा नुकसान कभी कभी कोशिश ही न करने से होता है। अगर श्रोताओं आपने कोई निर्णय लिया है और वो आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा तो खुद को दोष देने के बजाय उससे सीखिए, पूछिए मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। इस तरह सोचने से असफलता भी अनुभव में बदल सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथी श्रोता साथियों, हमारा मन अक्सर दो जगहों पर भटकता है, या तो बीते हुए समय में या आने वाले समय में।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, बीते समय की गलतियों को बार बार याद करना हमें परेशान कर सकता है और भविष्य की चिंता साथियों हमें वर्तमान से दूर कर सकती है। इसलिए खुद को बार बार वर्तमान में वापस लाना आप सीखिए। अपने आप से पूछिए कि इस समय मेरे सामने जो काम है मैं उसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। साथियों, यही सवाल आपकी ऊर्जा को चिंता से निकाल कर कार्रवाई

0: की ओर ले जा सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य कभी कभी हमें डराने लगते हैं कशिश, इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। साथियों, अगर आपको कोई परीक्षा पास करनी है तो पूरे पाठ्यक्रम के बारे में एक साथ सोचकर परेशान होने के बजाय आज के अध्ययन का लक्ष्य तय कीजिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर आपको कोई नया कौशल सीखना है श्रोताओं, तो हर दिन थोड़ा समय उसके लिए जरूर निकालिए। जब छोटा लक्ष्य पूरा हो कशिश, तो हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि खुद की मेहनत को पहचानना, यही छोटी छोटी उपलब्धि आत्मविश्वास बढ़ाती है।
0: बिल्कुल।
1: बड़ी सफलता कई बार छोटी छोटी लगातार कोशिशों से ही हमें मिलती है।
0: जी हाँ, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि खुद को थोड़ा आराम देना भी जरूरी है। जैसे कि काम पर ध्यान देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति हर समय काम में ही लगा रहे। जागृति जी, आराम भी जीवन का एक जरूरी हिस्सा होता है। लगातार साथियों तनाव में रहकर काम करने से आपका मन थक सकता है, इसलिए पढ़ाई या काम के बीच उचित विश्राम, पर्याप्त नींद, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, अपनी पसंद की रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: जब मन शांत होता है तो हम अपने काम पर ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दे पाते हैं। जागृति जी।
1: जी हाँ, तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन जरूरत से ज्यादा सोच विचार में उलझने के बजाय आगे बढ़ने में बीते, तो कुछ बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। पहली बात ये कि सोचिए लेकिन समय सीमा के साथ, किसी निर्णय के लिए जरूरी जानकारी जुटाइए और फिर निर्णय लेकर आगे बढ़िए।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी बात ये कि जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दीजिए, दूसरों की राय और भविष्य के हर परिणाम को नियंत्रित करना संभव है। तीसरी बात यह है कि शुरुआत से मत डरिए, हर विशेषज्ञ कभी न कभी शुरुआत करने वाला व्यक्ति था।
0: बिल्कुल।
1: चौथी बात, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, पहले शुरुआत कीजिए फिर सीखते हुए सुधार कीजिए। पांचवी बात, अपनी तुलना अपने पुराने रूप से कीजिए, आपने क्या सीखा और कितना आगे बढ़े ये अधिक महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ।
1: एक समय में एक काम करने की आदत आपकी एकाग्रता बढ़ा सकती है, साथ ही हर प्रयास आपको कुछ न कुछ नया सिखाती है, गलती सुधार का रास्ता दिखा सकती है और हर छोटी प्रगति आपको बड़े लक्ष्य के करीब ले जाती है। जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते के अनुभव, सीख और छोटी खुशियों का भी आनंद दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे युवा साथियों को अपने जीवन में उतारनी चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत से हम इतना समझ पाए हैं कि सोच विचार जीवन का जरूरी हिस्सा है। जागृति जी, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोच हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, इसलिए साथियों योजना बनाइए, सही जानकारी जुटाइए, निर्णय लीजिए और फिर अपने काम पर ध्यान दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: हर पल ये सोचते रहने के बजाय कि आगे क्या होगा, आप खुद से ये पूछिए कि अभी मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। दोस्तों याद रखिए कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को नहीं खोना है, काम शुरू करना है, सीखते रहना है और अपनी यात्रा का आनंद लेते जाना है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि जिंदगी केवल मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि मंजिल की ओर बढ़ते हुए हर कदम से सीखने और उसे महसूस करने का नाम भी है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने में देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्कालिक जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉक रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सही प्रबंधन सफलता की पहली सीढ़ी होती है। श्रोताओ, समय हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देता है।
0: बिल्कुल।
1: पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है अंजलि, कोई अवसर छूट जाए तो हम कभी कभी दूसरा अवसर भी हमें मिल जाता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि सफल व्यक्ति समय को केवल घड़ी की सुइयों में नहीं बल्कि अपने जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी के रूप में देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समय का सही प्रबंधन सफलता की पहली सीढ़ी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों न हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं समय प्रबंधन को लेकर, कि समय प्रबंधन सफलता की पहली सीढ़ी है।
1: जी हाँ जागृति जी, जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था कि समय दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देता है। जैसे कि पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, वस्तु खो जाए तो फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन श्रोता साथियों, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ती रहती हैं और अपने साथ हमारे जीवन का एक एक पल लेकर जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय का सही प्रबंधन करना भी उतना ही आवश्यक है।
0: जी हाँ,
1: सच ही कहा गया है कि समय का सदुपयोग सफलता की पहली सीढ़ी है। यानी कि जागृति जी, समय प्रकृति की ऐसी अमूल्य संपत्ति है जो अमीर गरीब छोटे बड़े सफल असफल सभी को समान रूप से मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, किसी सफल व्यक्ति को अधिक समय नहीं मिलता और न ही किसी सामान्य व्यक्ति को कम। अंतर केवल इतना होता है श्रोता साथियों कि सफल व्यक्ति अपने समय का बेहतर उपयोग सीख लेता है, जबकि कई लोग अपना बहुमूल्य समय बिना उद्देश्य के कार्यों में गंवा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए समय प्रबंधन केवल घड़ी देखने या समय सारणी बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने की कला है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम अक्सर धन को बहुत मूल्यवान समझते हैं, लेकिन वास्तव में समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने के बाद उसे मेहनत से दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। हम देखते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में समय का महत्व और भी अधिक है। पढ़ाई का समय अगर केवल मनोरंजन या आलस्य में निकल जाए तो बाद में पछतावा ही होता है। समय हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। सुबह का सूरज हमें ये संदेश देता है कि आज का दिन हमारे हाथ में है। हम चाहे तो इसे सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने में लगा सकते हैं, या इसे बिना उद्देश्य के व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए हर दिन को एक अवसर समझना होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि समय प्रबंधन का अर्थ है कि अपने उपलब्ध समय का इस प्रकार उपयोग करना कि आवश्यक कार्य उचित समय पर पूरे हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे हैं। इसमें यह तय करना शामिल है श्रोता साथियों कि कौन सा काम पहले करना है, किस काम के लिए कितना समय देना है और किन गतिविधियों में समय कम करना चाहिए। कह सकते हैं कि समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दिन भर केवल काम करता रहे। पर्याप्त आराम, परिवार के साथ समय, मनोरंजन, खेल और स्वयं के विकास के लिए समय निकालना भी अच्छे समय प्रबंधन का हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: यही समय प्रबंधन हमें व्यस्त नहीं बल्कि व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है वो अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता है। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो हम कितना भी तेज चले सही मंजिल तक पहुंचना कठिन हो जाता है। विद्यार्थी अगर ये तय करता है कि उसे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है तो वो पढ़ाई के लिए नियमित समय निकाल सकता है।
1: बिल्कुल।
0: युवा अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा, कौशल या करियर के लिए तैयारी कर रहा है तो उसे अपने लक्ष्य के अनुसार समय बांटना होगा। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना भी उपयोगी होता है श्रोताओं। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, दिन में हमारे सामने अनेक काम होते हैं, लेकिन सभी काम समान महत्व के नहीं होते, इसलिए हमें प्राथमिकता तय करना सीखना चाहिए। जो काम सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद के लिए रखा जा सकता है और प्राथमिकता तय करने से हमारा ध्यान बिखरता नहीं है और महत्वपूर्ण समय जो है उसमें हम अच्छे कार्य जो हमारे महत्वपूर्ण है वो कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी के लिए परीक्षा की तैयारी, गृह कार्य, आवश्यक अध्ययन महत्वपूर्ण कार्य है। यदि वह पढ़ाई के समय लगातार मोबाइल चलाता रहे और बाद में समय की कमी होने पर पढ़ाई करे तो तनाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत यदि वह पहले से जरूरी कार्य पूरा करे तो फिर मनोरंजन के लिए समय निकल सकता है और जीवन अधिक व्यवस्थित हो पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समय प्रबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमें हमारी प्राथमिकताओं को तय करना जरूरी है और उसी अनुसार जब हम समय का प्रबंधन करते हैं तो हमारे महत्वपूर्ण कार्य समय पर हो पाते हैं। यही बात आती है समय बर्बाद करने वाली आदतों की। तो श्रोता साथियों, समय प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती समय की कमी नहीं बल्कि समय का गलत उपयोग है।
1: बिल्कुल।
0: आलस्य, अनावश्यक बातचीत, बिना उद्देश्य मोबाइल चलाना, लगातार सोशल मीडिया को देखते रहना, काम को टालना और बिना योजना के दिन बिताना हमारी उत्पादकता को कम कर सकता है। जागृति जी, कई बार हम कहते हैं कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, यही छोटी सी सोच आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: जब काम जमा होते जाते हैं तो तनाव बढ़ता है और कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए श्रोता साथियों, आज का काम आज करने की आदत विकसित करनी चाहिए। हर काम को अंतिम समय तक टालने के बजाय समय रहते पूरा करना बेहतर है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि समय प्रबंधन की शुरुआत एक छोटी सी योजना से की जा सकती है। श्रोता, सुबह या पिछली रात अगले दिन के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाई जा सकती है। इससे हमें पता रहता है कि दिन में क्या करना है। उदाहरण के तौर पर कोई युवा साथी अपने दिन में पढ़ाई, स्कूल या कॉलेज, खेल, परिवार, आराम और अन्य जरूरी गतिविधियों के लिए समय तय कर सकते हैं। योजनाएं बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए। श्रोताओं, ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसका वास्तविक रूप से पालन हम कर सके। योजना बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा लचीलापन भी होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अंजलि कि हर दिन परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। साथ ही कहना चाहेंगे कि टालम टोल की आदत से हमें बचना होगा। टालम टोल समय प्रबंधन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कल से शुरू करेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी मन नहीं है, ऐसी बातें धीरे धीरे हमारी आदत बन सकती है। दोस्तों,
0: बिल्कुल,
1: किसी बड़े काम को देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। अगर कोई विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाकर परेशान हो रहा है तो वह पहले छोटे अध्ययन सत्र से शुरुआत कर सकता है। श्रोताओं, एक बार जरूर आप शुरुआत कीजिए, आगे आगे आपके सारे कार्य आसानी से होते जाएंगे।
0: बिल्कुल शागृति जी, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन निरंतरता बड़ी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल माध्यम शिक्षा और जानकारी के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन श्रोता साथियों, इनका अनियंत्रित उपयोग समय को तेजी से खर्च कर सकता है। इसलिए मोबाइल का उपयोग उद्देश्य के साथ करना चाहिए। पढ़ाई या किसी जरूरी काम के समय अनावश्यक सूचनाओं और मनोरंजन से दूरी बनाना उपयोगी हो सकता है। तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तकनीक का उपयोग करें, तकनीक हमारा समय नियंत्रित न करे।
1: बिल्कुल, और हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि कुछ लोग समय प्रबंधन का अर्थ केवल अधिक से अधिक काम करना समझते हैं। ये सही नहीं है। लगातार काम करते रहने से थकान बढ़ जाती है और कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: शरीर और मन को आराम देना भी जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना, खेल खेलना, व्यायाम करना, परिवार के साथ समय बिताना, मन को शांत रखने वाली गतिविधियां जीवन में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करती है अंजलि। और हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ और संतुलित व्यक्ति अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता है। इसीलिए श्रोताओं, समय प्रबंधन का उद्देश्य जीवन को बोझिल बनाना नहीं है बल्कि अधिक व्यवस्थित बनाना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात आती है कि विद्यार्थी जीवन में समय प्रबंधन की आदत भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करती है।
1: बिल्कुल,
0: विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ खेल, रचनात्मक गतिविधियां और आराम के लिए भी समय देना चाहिए। परीक्षा के कुछ दिन पहले पूरी पढ़ाई करने के बजाय श्रोता साथियों, नियमित अध्ययन अधिक प्रभावी होता है।
1: जी हाँ।
0: रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से विषयों को समझने और दोहराने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। विद्यार्थी यदि प्रतिदिन अपने कार्यों की समीक्षा करे और यह देखे कि आज उसने क्या पूरा किया है, क्या बाकी है, तो वह धीरे धीरे अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना सीख सकता है।
1: बिल्कुल,
0: युवा अवस्था भी जागृति जी जीवन निर्माण करने का महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय सीखी गई अच्छी आदतें भविष्य को मजबूत बना सकती है। युवाओं के सामने पढ़ाई, करियर, कौशल, परिवार और समाज से जुड़े अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। आज का युवा यदि अपने समय का उपयोग नई चीजें सीखने, कौशल विकसित करने, पढ़ने, स्वस्थ रहने और समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने में करता है तो वह अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती, सपनों को पूरा करने के लिए समय, मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों, समय प्रबंधन और अनुशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमने किसी काम का समय निर्धारित किया है तो उसे पूरा करने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। अनुशासन का अर्थ कठोर जीवन जीना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के लिए सही निर्णय लेना है। कभी कभी मन मनोरंजन करना चाहता है अंजलि, लेकिन अगर जरूरी कार्य बाकी है तो पहले श्रोताओं जिम्मेदारी पूरी करना अनुशासन है।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी अनुशासित आदतें आगे चलकर बड़े परिणाम देती है। हम देखते हैं कि हर दिन हमारी योजना के अनुसार हम नहीं चल सकते, कभी कोई जरूरी काम अचानक आ जाता है, कभी समय कम पड़ जाता है और कभी हमारी योजना पूरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में निराश होने के बजाय देखना होगा कि गलती कहाँ हुई है।
0: बिल्कुल,
1: अगर किसी काम में जरूरत से ज्यादा समय लग गया है तो अगली बार उसके लिए बेहतर योजना बनाई जा सकती है। समय प्रबंधन भी एक ऐसी कला है श्रोताओं, जिसे अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए एक दिन की असफलता को अपनी पूरी यात्रा की असफलता हमें नहीं मानना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हमें समय बचाना है, लेकिन समय को वास्तव में बचाकर रखा नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल,
0: जो समय हमारे पास है उसे केवल सही दिशा में लगाया जा सकता है। एक घंटा पढ़ाई में लगाया जाए तो ज्ञान बढ़ सकता है, वही एक घंटा किसी उपयोगी कौशल को सीखने में लगाया जाए तो नई क्षमता विकसित हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: किसी जरूरतमंद की मदद में लगाया जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कितना समय है, बल्कि ये होना चाहिए कि मेरे पास जो समय है मैं उसका उपयोग किस तरीके से कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बातें की समय प्रबंधन को लेकर, तो अंत में यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय जीवन की वो पूंजी है जिसे खर्च तो किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए समय का सम्मान करिए, वास्तव में अपने जीवन का सम्मान करने के बराबर है।
0: बिल्कुल,
1: सफल व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के पास समय की मात्रा समान होती है अंजलि, लेकिन उनके समय के उपयोग का तरीका बहुत अलग होता है। सफलता के लिए प्रतिभा और मेहनत जरूरी है, लेकिन इन दोनों को सही दिशा देने का काम भी समय प्रबंधन करता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देखना है श्रोताओं। लक्ष्य तय करने हैं, प्राथमिकताएं निर्धारित करनी है, काम को टालने से बचना है, तकनीक का संतुलित उपयोग करना है और पढ़ाई, काम, आराम तथा परिवार के बीच भी संतुलन बनाए रखना है।
0: जी जी,
1: याद रखिए घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती। जो व्यक्ति समय की चाल को समझकर उसके साथ कदम मिलाकर चलता है वही अपने सपनों की मंजिल के करीब पहुंचता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम में वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारस्कर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटो अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, मौसम में बदलाव आते ही हमारे आसपास कई लोग बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों से जूझते दिखाई देते हैं।
0: जी हाँ,
1: कई बार हम इसे सामान्य बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं तो कभी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेना शुरू कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आप जानते हैं कि बुखार खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर में किसी संक्रमण या दूसरी समस्या का संकेत हो सकता है?
0: जी हाँ,
1: वायरल संक्रमण के कारण होने वाला बुखार आम है लेकिन इसके लक्षणों को समझना और सही समय पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों, हम यही जानेंगे कि वायरल बुखार क्या होता है, इसके कारण और लक्षण क्या हैं, घर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं वायरल बुखार कारण, लक्षण और बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि बुखार हमारे शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। जब शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण होता है श्रोता साथियों, तो शरीर उससे लड़ने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा देता है। वायरल संक्रमण के कारण होने वाले बुखार को आम भाषा में श्रोता साथियों हम वायरल बुखार कहते हैं। यह किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि अलग अलग वायरस से होने वाले कई संक्रमणों से श्रोता साथियों बुखार का प्रमुख लक्षण है वो हमें दिखाई दे सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, जब शरीर में वायरस प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि शरीर की रोगों से लड़ने की जो व्यवस्था है उसे मुकाबला करती है। इस दौरान शरीर का तापमान बढ़ सकता है और यही कारण है कि बुखार को शरीर की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है।
0: जी हाँ,
1: हालांकि श्रोता साथियों, हर बुखार वायरल नहीं होता। बुखार के पीछे बैक्टीरियल संक्रमण, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए केवल लक्षण देखकर स्वयं यह तय करना सही नहीं कि बुखार वायरल ही है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वायरल बुखार का कारण वायरस से होने वाले संक्रमण है। वायरस कई तरीकों से व्यक्ति में श्रोता साथियों प्रवेश कर सकता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आते हैं तो भी हमें यह बुखार हो सकता है। जब श्रोता साथियों कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो हम देखते हैं कि उसके आसपास संक्रमण है वो फैल जाता है। संक्रमित व्यक्ति के श्रोता साथियों करीब रहने से या उसके आसपास रहने से यह बुखार दूसरे लोगों में भी फैल सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ हाथों की सफाई न रखना। हम दिन भर में कई चीजों को छूते हैं। यदि हाथ संक्रमित सतह के संपर्क में आ जाए तो फिर वही हाथ आँख, नाक, मुँह पर चले जाते हैं तो कुछ संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है।
0: जी हाँ,
1: बाहर से आने के बाद और भोजन करने से पहले हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसी के साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों की बात करें तो श्रोता साथियों, बंद या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कुछ श्वसन संबंधित वायरल संक्रमण आसानी से फैल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: संक्रमण के

0: मौसम में विशेष सावधानी रखना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, आराम शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लगातार श्रोता साथियों थकान, कम आराम और श्रोता साथियों खराब खान पान हो तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को यह संक्रमण है वो जल्दी हो सकता है। हम देखते हैं कि वायरल बुखार के लक्षण वायरस और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। सामान्य तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है, ठंड लगना या कपकपी हमें महसूस होती है, सिर दर्द होता है, शरीर की मांसपेशियां हैं वो दर्द करती है, थकान और कमजोरी आ जाती है, गले में खराश है वो बढ़ने लगती है, नाक बंद हो जाती है, खांसी, भूख कम लगना और कभी कभी अंजलि जी हम देखते हैं कि मतली या उल्टी भी हमें होने लगती है। श्रोता साथियों हर व्यक्ति को सभी लक्षण दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण है वो दिखाई दे सकते हैं। तो श्रोता साथियों इसके माध्यम से हमें समझ जाना है कि इस व्यक्ति को वायरल बुखार है।
0: बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वायरल बुखार के कुछ सामान्य लक्षण हमें दिखाई दे तो हमें तुरंत समझ जाना है कि हमें वायरल बुखार है और डॉक्टर से संपर्क करके हमें इसका इलाज करने की जरूरत है।
1: जी हाँ।
0: आगे हम जानेंगे कि बुखार होने पर और भी हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम हमारे साथियों को एक और प्यारे से गीत के साथ में यहाँ पर मनोरंजन करवा दें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं अब बात करते हैं बुखार होने पर हम क्या करें। श्रोता साथियों, सबसे पहली बात है कि हमें घबराना नहीं है और शरीर को आराम देना है।
1: जी हाँ,
0: बुखार के दौरान शरीर संक्रमण से लड़ने में ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए मनीषा पर्याप्त नींद और आराम लेना जरूरी है। बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से कमजोरी भी बढ़ सकती है, इसलिए आराम करें श्रोता साथियों और पर्याप्त तरल पदार्थ लेते रहें, क्योंकि बुखार के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए साफ पानी, सूप और अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ लेते रहें। यदि उल्टी या दस्त भी हो रही हो तो शरीर में पानी और लवण की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसी स्थिति में ORS का उपयोग स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के अनुसार दिया जा सकता है। हल्का और पौष्टिक भोजन ले, यानी कि भूख कम होने पर भी शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए अपनी सहनशीलता के अनुसार हल्का और पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है। दाल, खिचड़ी, दलिया, फल, ये सभी संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं। इसी के साथ श्रोता साथियों, बुखार कितना है, कब से है और साथ में कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: और इन सारी स्थिति को हमें डॉक्टर को भी बताना होगा ताकि सही समय पर सही इलाज हमारा हो पाए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि बुखार के दौरान हमारे शरीर की ऊर्जा है और पोषण है वो कम हो जाता है और इनकी आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए श्रोता साथियों, इस समय हमें खाना है वो बिल्कुल बंद नहीं करना है। यदि भूख कम लग रही है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में श्रोता साथियों आप भोजन खा सकते हैं। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि हमारे श्रोता साथी हैं वो दाल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं और हल्का भोजन है श्रोता साथियों वो हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देने में मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों इस टाइम पे हमें ज्यादा तला भुना है वो भी नहीं खाना है और अत्यधिक मसालेदार जो खाना होता है उससे भी बचना है। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि अगर हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमारी तबीयत है वो और ज्यादा खराब हो सकती है और बुखार है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आपको वायरल बुखार होता है तो सबसे पहले खाने का ध्यान हमें रखना है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे कि बारिश के मौसम के दौरान मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा इस समय बढ़ जाता है, इसलिए बुखार होने पर केवल यह मान लेना कि यह वायरल है ये बात सोचना सही नहीं है। यदि बुखार के साथ तेज बदन दर्द, सिर दर्द, उल्टी, अत्यधिक कमजोरी, खून आने जैसे लक्षण हो या क्षेत्र में मच्छर जनित बीमारी का प्रकोप हो तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, पानी की टंकियां और बर्तनों को ढककर रखें और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं।
1: जी
0: बच्चों
1: हाँ?
0: में बुखार आने पर माता पिता को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बच्चे को पर्याप्त तरल पदार्थ दें, आराम करवाएं, उनकी स्थिति पर नजर रखें। बच्चे को दवा देते समय उम्र और वजन के अनुसार सही खुराक बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: हाँ?
0: इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी दवा देना उचित नहीं है। इसी तरह बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों में संक्रमण का असर अधिक हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे लोगों में लक्षण बढ़ने पर जल्दी चिकित्सकीय सलाह लेना बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ,
0: श्रोता साथियों, वायरल संक्रमण से पूरी तरह बचाव हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन संक्रमण का जोखिम कम करने के लिए हम कई छोटी छोटी आदतों को अपना सकते हैं, जैसे हाथ साफ रखें, खांसते और छींकते समय मुंह नाक को ढक के रखें, बीमार होने पर दूसरों के साथ अनावश्यक नजदीकी न बनाएं, साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग करें, भोजन को ढककर रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें, घर के कमरों में उचित वेंटिलेशन रखें, मच्छरों से बचाव करें और घर के आसपास पानी जमा न होने दें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ बात करें परिवार की भूमिका की तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बीमार व्यक्ति को केवल दवा की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि परिवार के सहयोग की भी जरूरत होती है।
0: जी जी।
1: उसे आराम करने दे, समय पर पानी दे, भोजन दे, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां हैं वो भी समय समय पर दे। अंजलि जी, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे बच्चे हैं उनका ध्यान रखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अक्सर श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे घर के बच्चे हैं वो दवाई नहीं खाते हैं टाइम पर और ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए इसमें परिवार की भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर परिवार अच्छे से उनका ध्यान रखे और उन्हें उचित दूरी बनाने के लिए समझाएं कि ये वायरल बुखार है, ये दूसरे लोगों में भी फैल सकता है, हमें इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब अगर बच्चे और बुजुर्गों को समझाया जाए श्रोता साथियों तो हम देखते हैं कि इस परेशानी से ज्यादातर वो बच सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आज की बातचीत से हमने जाना कि वायरल बुखार के दौरान घबराने की बजाय सही जानकारी और सावधानी जरूरी है। बुखार शरीर में संक्रमण का संकेत हो सकता है, लेकिन हर बुखार को वायरल मान लेना ठीक नहीं है। आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और जरूरत पड़ने पर समय पर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। ये छोटी छोटी बातें बीमारी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे जरूरी बात कि अपने मन से एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं शुरू न करें और लगातार या गंभीर लक्षण होने पर स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। याद रखिए कि बुखार को न करें अंदाज, सही समय पर जांच और इलाज, साफ सफाई को बनाएं अपनी पहचान, स्वस्थ रहें परिवार और पूरा गांव।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुंद।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर और स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहां साथियों हम बात करते हैं एक नई सोच और एक नई उड़ान को लेकर जो हमारे जीवन को बदल देती है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथियों लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। आज भी कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर मैं जुड़ चुकी हूँ। साथियों जिस विषय को लेकर आज मैं कार्यक्रम में आपसे बात करने वाली हूँ वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसी आदत को लेकर बातचीत होगी जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है, और वो है सीखते रहने की आदत। साथियों क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग हर दिन बेहतर होते जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर चुनौती को पार कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी सफलता को प्राप्त करने के लिए ढेर सारे संघर्ष करने पड़ते हैं और परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के सामने परिस्थितियां ऐसे आती हैं कि वे उन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इन्हीं दो पहलुओं को लेकर दोस्तों आपसे बातचीत करूंगी और जानेंगे हम कि सीखते रहने की आदत होती क्या है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो दोस्तों पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में, फिर हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम में बातचीत के सफर की ओर। तो बने रहिएगा आप कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको विषय तो बता ही दिया था कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं सीखते रहने की आदत को लेकर। साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ये गौर किया है कि कुछ लोग हर दिन बेहतर होते जाते हैं, हर चुनौती को पार कर लेते हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, वे कभी सीखना नहीं बंद करते। सोचिए साथियों कि अगर हम वही जानते रहे जो हम आज जानते हैं, तो क्या हम कल बेहतर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है साथियों। लेकिन सीखना है या नहीं सीखना, ये हम पर निर्भर करता है। तो श्रोताओं, अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप भी हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम कार्यक्रम में जानने वाले हैं कि हम सीखते रहने की आदत कैसे बना सकते हैं, कैसे हम हर दिन खुद को कुछ नया सिखाएंगे और कैसे खुद को हम हर दिन बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे प्रयास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम के सफर की सीखते रहने की आदत को लेकर, क्योंकि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें खुद से छोटा सा वादा जरूर करेंगे कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा। तो साथियों, आपसे कहना चाहूंगी कि सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, ये जीवन जीने का एक तरीका होता है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, हर गलती हमें एक नया पाठ पढ़ाती है साथियों, और हर इंसान हमें एक नई सीख देता है। हम देख सकते हैं कि जो सीखना बंद नहीं करते, वे बढ़ना बंद भी नहीं करते। तो आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि सीखते रहना एक बहुत अच्छी आदत होती है। अब प्रश्न ये उठता है साथियों कि सीखते रहने की आदत को हम अपने अंदर विकसित कैसे करें। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की जिज्ञासा को जगाना है। साथियों, आप सवाल पूछिए खुद से, क्यों और कैसे, यानी कि हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिज्ञासा ही सीखने की पहली सीढ़ी होती है। इसी के साथ रोज कुछ नया सीखने का संकल्प आप ले दोस्तों, क्योंकि हर दिन आप अगर खुद के लिए 10-15 मिनट निकाल ले दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस समय में आप कुछ नई जानकारी ले सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं या फिर कोई नया शब्द भी जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, छोटी छोटी सीखें ही बड़ा बदलाव लेकर आती है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों को पढ़ने की आदत भी होती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी आदत है, इसे भी आप अपना सकते हैं साथियों, क्योंकि जो किताबें होती हैं वो हमारी सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। इसमें आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है साथियों, और पढ़ने से हम खुद को बेहतर भी बना सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो जैसा कि दोस्तों, मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता ही रही हूं कि सीखने की आदत को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके हम जान रहे हैं, तो ये बातें आगे भी जारी रहेंगी। आगे भी कुछ तरीके हम जानेंगे साथियों, जिससे हम हमारी सीखने की आदत को विकसित कर सकते हैं। तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से विषय हमारा चल रहा है कि हम सीखने की आदत कैसे अपना सकते हैं, और गीत से पहले कुछ बातें रही थी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में सीखने की आदत को अपना सकते हैं। और गीत से पहले जैसा कि हम जान रहे थे कि सीखने की आदत को हम अपने जीवन शैली में विकसित कैसे करें, दोस्तों हमने जाना था कि हमें पढ़ने की आदत को अपनाना चाहिए, रोज कुछ नया सीखने का संकल्प हमें लेना चाहिए और खुद के अंदर की जिज्ञासा को हमें जगाना है। इसी के बाद दोस्तों अगर बात करें गलतियों से सीखने की, तो गलती होना बुरा नहीं होता साथियों, गलती से ना सीखना बुरा होता है। हर गलती में आप खुद से ये पूछिए कि मैं इस गलती से क्या सीख सकता हूँ। इससे दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को वापस आप दोबारा न करें, ये भी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगली बार अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को आप अपनी सीख माने। इसी के आगे दोस्तों नए अनुभव लेना भी जरूरी है, क्योंकि नए लोगों से मिलने से हम नई नई चीजें सीख पाते हैं। इसमें आप नई नई जगहों पर जा सकते हैं और नई नई चीजें ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव हमारी असली शिक्षा होती है। तो आप ये उपाय भी अपना सकते हैं, इससे भी हमारा सीखने की कला विकसित हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों सीखी हुई चीजों को लागू करना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, उसे जीवन में लागू करना भी उतना ही जरूरी होता है। हम देखते हैं कि कुछ नया सीखने के ढेर सारे फायदे होते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, नए नए अवसर हमें मिलते हैं, जीवन में उत्साह बना रहता है साथियों। इसलिए आज से ही आप सीखने की आदत को अपनाएं, क्योंकि दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। हम अगर वर्तमान में देखें तो आज के समय में जानकारियां हमारे पास बहुत है, लेकिन सीखने की इच्छा हमारे अंदर कम होती जा रही है। हम मोबाइल, सोशल

मीडिया में बहुत व्यस्त रहने लगे हैं साथियों, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए सीखने की आदत को अपनाना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। सोचिए साथियों कि अगर एक पेड़ जो है वो बढ़ना बंद कर दे तो क्या होगा, वो सूख जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम इंसान भी सीखना बंद कर देंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। इसलिए सीखना कोई काम नहीं है साथियों, यह तो हमारी एक जीवन शैली है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो सीखता है वही जीतता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखें कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। आज से ही श्रोता साथियों आप खुद से एक वादा कीजिए कि हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे, हर गलती पर आप कुछ सीखेंगे और खुद को हर दिन बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों सीखना कभी बंद नहीं होता और जिंदगी सिखाना हमें कभी बंद नहीं करती। इसलिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए साथियों। क्योंकि दोस्तों आज से ही आप खुद से ये वादा करेंगे कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहूंगा। याद रखिए साथियों, सीखना कभी उम्र का मोहताज नहीं होता और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। दोस्तों अगर जिंदगी आपको बार बार गिरा रही है तो शायद वो आपको कुछ नया सिखाना चाहती है। इसलिए गिरिए, संभलिए और हर बार कुछ नया सीखिए। क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो हर दिन सीखता है वह एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। तो श्रोताओं आज से ही सीखना अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि बातें जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी साथियों एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के साथ ही आज के हमारी प्रेरणादायी बातें और कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े में देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है हमारी परंपरा हमारी पहचान, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथ, कभी आपने सोचा है कि हमारे गांव की पहचान आखिर किससे बनती है? क्या केवल खेतों घरों रास्तों से बनती है? नहीं साथियों, गांव की असली पहचान उसके रीति रिवाजों, लोक गीतों, लोक नृत्यों, बोली भाषा, पहनावे, खान पान, त्योहार, मेलों, पारंपरिक ज्ञान और आपसी रिश्तों से बनती है। इन्हीं सबका नाम है हमारी गांव की परंपरा और संस्कृति।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी थी। श्रोता साथियों, आज हम बात कर रहे हैं गांव की परंपराओं और संस्कृतियों के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारत को गाँव का देश कहा जाता है। श्रोता साथियों, आज हमारे देश ये वो तेजी से आधुनिकता और तकनीकी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन गांवों की पहचान आज भी श्रोता साथियों उनकी परंपराओं, संस्कृति, रीति रिवाजों और आपसी भाईचारे से बनी हुई है। गांव की संस्कृति केवल व्यवहार मनाने, त्योहार मनाने, पारंपरिक कपड़े पहनने या पुराने रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रोता साथियों इसमें लोगों का रहन सहन, खेती किसानी, खान पान, बोली, भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य, पारिवारिक संबंध, सामाजिक सहयोग और साथ ही श्रोता साथ प्रकृति के साथ जुड़ाव भी शामिल है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहेंगे कि परंपरा का अर्थ केवल पुराने समय से चली आ रही किसी रस्म को निभाना नहीं है। परंपरा वह ज्ञान, व्यवहार और जीवन पद्धति है जिसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। हमारे गाँव में बुजुर्गों के पास खेती का अनुभव है, मौसम को समझने का अपना तरीका है, बीजों को संभालने की जानकारी है, पशुओं की देखभाल का पारंपरिक ज्ञान है और प्राकृतिक संसाधनों के साथ संतुलन बनाकर रहने की सीख है। दादी नानी से सुनी कहानियां, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, फसल के समय की खुशियां, गांव के मेले, सामूहिक पूजा पाठ, पारंपरिक व्यंजन, लोक नृत्य और लोकगीत, ये सभी हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे वागड़ जैसे क्षेत्रों में तो संस्कृति प्रकृति और ग्रामीण जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ लोकगीत की धूप में खेल खलियान की खुशियां हैं, लोक नृत्यों में सामूहिकता है और पारंपरिक खान पान में स्थानीय मौसम और उपलब्ध संसाधनों की समझ भी दिखाई देती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव की परंपरा हमें अपने पूर्वजों और अपनी जड़ों से जोड़ती है। पीढ़ियों से चली आ रही श्रोता साथियों अनेक परंपराएं हमारे पूर्वजों का अनुभव और जीवन जीने की समझ छिपी होती है। इन्हीं परंपराओं के कारण श्रोता साथियों गाँव में सामूहिकता, सहयोग और अपनापन हमें देखने को मिलता है। इसीलिए बदलते समय के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी अच्छी परंपराओं को उपयोग में लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गांव की संस्कृति उस जीवन पद्धति का नाम ही जिसे गांव के लोग वर्षों से अपनाते आए हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसमें श्रोता साथियों गांव की भाषा, बोली, लोकगीत, लोक कथाएं, त्योहार, मेले, धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं वो, सामाजिक आयोजन, खान पान, पहनावा, खेती से जुड़ी परंपराएं और लोग भी आपसे संबंध में शामिल होते हैं।
1: जी जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक जीवन शैली ने हमारे जीवन को आसान बनाया है। नई चीजें सीखना जरूरी भी है, लेकिन इस बदलाव के बीच हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह किसी पेड़ को मजबूत बने रहने के लिए उसकी जड़ों का मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह मनीषा, समाज को मजबूत बनाए रखने के लिए उसकी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान जरूरी है। हमारी बोली केवल बोलने का तरीका नहीं है, हमारे लोकगीत केवल गीत नहीं है, हमारी लोक नृत्य केवल मनोरंजन नहीं है, हमारा पारंपरिक भोजन केवल खाना नहीं है। इन सब के पीछे हमारे पूर्वजों का अनुभव, प्रकृति की समझ और जीवन जीने की एक पूरी कहानी छिपी होती है, जिसे समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से गाँव की परंपरा और संस्कृतियों के महत्व को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, तो ये बातें आगे भी हम ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम गांव की परंपरा और संस्कृति के महत्व को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, इन्हीं श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि बुजुर्ग हैं संस्कृति के जीवित पुस्तकालय। जी हां श्रोता साथियों, गांव के बुजुर्ग हमारी संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षक हैं। उनके पास ऐसी बहुत सी बातें हैं जो किताबों में आसानी से नहीं मिलती। उन्हें पता होता है मनीषा कि किस मौसम में कौन सी फसल बेहतर होती है, पुराने समय में पानी को कैसे बचाया जा सकता है, कौन से पारंपरिक बीज इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन से लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं और कौन सी परंपरा के पीछे क्या कहानी है। लेकिन आज कई बार नई पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि बच्चे और युवा अपने दादा दादी, नाना नानी और गाँव के बुजुर्गों के साथ बैठे और उनसे अपनी संस्कृति के बारे में पूछे। एक छोटी सी बातचीत हमारी विरासत को बचाने का बड़ा कदम बन सकती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, गांव के लोकगीत हमारी संस्कृति की आवाज है। इन गीतों में प्रेम है, प्रकृति है, खेती है, त्योहार है, रिश्ते हैं और जीवन के सुख दुख हैं। पहले जब मनोरंजन के साधन कम थे तब लोग सामूहिक रूप से गीत गाते थे, नृत्य करते थे, त्योहार मनाते थे। इससे गाँव के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ता था। लोकगीत हमें बताते हैं कि पुराने पूर्वज जीवन को किस तरह देखते थे। लोक नृत्य भी केवल नृत्य नहीं है, इसमें शरीर की गति के साथ साथ समूह की एकता दिखाई देती है। जब गांव के लोग मिलकर नृत्य करते हैं तो वहां जाति, उम्र और आर्थिक स्थिति की जो दीवारें हैं वो कुछ समय के लिए पीछे छूट जाती हैं और सामने आती है सामुदायिक एकता।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है श्रोता साथियों कि इसमें व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामूहिक जीवन को भी महत्व दिया जाता है। गांव में किसी श्रोता साथियों एक परिवार की खुशी या परेशानी अक्सर पूरे समुदाय की चिंता बन जाती है। शादी विवाह, त्योहार, फसल कटाई, धार्मिक आयोजन या किसी परिवार की कठिन परिस्थितियों में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि परंपरा किसी भी समाज की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब हम अपने गांव की पुरानी परंपराओं को जानते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बुजुर्ग हैं वे किस तरह जीवन जीते थे, प्रकृति के साथ उनका संबंध कैसा था और वे कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते थे। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज की पीढ़ी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है श्रोता साथियों कि हम कहां से आए हैं, अपनी जड़ों को जानने वाले व्यक्ति और अपनी संस्कृतियां क्या है और हमें अच्छी संस्कृतियों को किस प्रकार अपनाना चाहिए। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों और युवाओं को गांव की अच्छी परंपराओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति हमारी रसोई में भी दिखाई देती है। स्थानीय अनाज, दालें, सब्जियां, मोटे अनाज, पारंपरिक मसाले और मौसम के अनुसार तैयार किए जाने वाले व्यंजन हमारे ग्रामीण जीवन की पहचान है। हमारी दादी नानी को पता होता था कि गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाले कौन से स्थानीय खाद्य पदार्थ उपयोगी हैं और सर्दियों में कौन से भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। आज जब बाजार में तरह तरह के पैकेट वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं तब उनमें पारंपरिक भोजन को याद रखने और अगली पीढ़ी को सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है श्रोता साथियों कि हम आधुनिक भोजन को पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि हमें आधुनिक जानकारी और पारंपरिक ज्ञान के बीच संतुलन बनाना होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव में त्योहार केवल श्रोता साथियों पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, वे लोगों के एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम भी बनते हैं। देखते हैं कि दीपावली, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, तीज, गणगौर, मकर संक्रांति और साथ ही श्रोता साथियों अन्य स्थानीय जो त्योहार है जो गाँव के सामूहिक उत्साह को बढ़ावा देते हैं। त्योहारों के अवसर पर श्रोता साथियों घरों की सफाई की जाती है, पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं और रिश्तेदार और पड़ोसी एक दूसरे के घर जाते हैं। कई स्थानों पर श्रोता साथियों लोक गीत और लोक नृत्यों के आयोजन किए जाते हैं। इस तरह अंजलि जी हम देखते हैं कि त्योहार हमारे संस्कृति और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी करती है। साथ ही साथियों हम देखते हैं कि गांव की संस्कृति में लोक गीतों का विशेष स्थान है। पुराने समय में मनोरंजन के साधन श्रोता साथियों कम थे, इसीलिए लोग अपने सुख दुख में गीतों के माध्यम से व्यक्त करते थे। विवाह, जन्म हो किसी का या फसल कटाई हो या त्योहार त्योहार हो, कोई भी हो, श्रोता साथी हो, तो गीतों के माध्यम से उसे व्यक्त करके मनोरंजन किया जाता था और एक दूसरे के दुखों को साझा किया जाता था।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गाँव की संस्कृति का सबसे सुंदर पहलू प्रकृति के साथ उसका रिश्ता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि पानी, जंगल, जमीन और पशु हमारे जीवन का आधार है। तालाबों की देखभाल, वर्षा के पानी को बचाना, पेड़ पौधों का संरक्षण, पशुओं की उपयोगिता समझना और जमीन को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखना, इन सब में प्रकृति के साथ संतुलन की सोच दिखाई देती है। आज जल संकट, मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हमारे सामने है। ऐसे समय में अपनी पुरानी परंपराओं को समझना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। हमें यह देखना चाहिए कि पुरानी परंपराओं में से कौन सी बातें आज भी उपयोगी हैं और उन्हें आधुनिक तरीके के साथ कैसे अपनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि लोक नृत्य है वो हमारे गांव की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रोता साथियों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य हमें देखने को मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: राजस्थान में घूमर सहित अनेक लोक नृत्य और लोक संगीत प्रसिद्ध है। इसमें श्रोता साथियों केवल मनोरंजन नहीं होता है बल्कि स्थान और इतिहास और हमारे जीवन शैली की झलक भी हमें देखने को मिलती है। आज हम देखते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट के कारण मनोरंजन के साधन है वो बदल गए हैं, फिर भी श्रोता साथियों लोक संगीत, लोक नृत्य को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों इनके समाप्त होने पर हमारी संस्कृति की पहचान का हिस्सा है वो कमजोर पड़ सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि गांव की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आधार सामूहिकता भी है। पहले गांव में किसी परिवार के घर शादी हो, कोई त्योहार हो, फसल कटाई हो या किसी के घर में कोई कठिन परिस्थिति आए, लोग मिलकर उसका साथ देते थे। यही भावना गांव को परिवार जैसा बनाती थी। आज हमारा जीवन पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया है, हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है। ऐसे समय में सामूहिक त्योहार, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्राम स्तर के आयोजन लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर सकते हैं। परंपरा हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक समुदाय का हिस्सा हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं, तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगी, लेकिन क्यों ना अभी साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रही थी हमारे गांव की परंपराओं और लोक संस्कृतियों को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि गांव की बोली और भाषा के महत्व की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि हर गांव के क्षेत्र में अपनी बोली होती है। बोली उस क्षेत्र का इतिहास, जीवन और भावनाएं छिपी होती है। साथ ही हम देखते हैं कि ग्रामीण लोग ही वे हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय बोलियों में श्रोता साथियों अनेक कहावती, मुहावरे, लोक कथाएं होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जीवन के अनुभव और सीख छिपी होती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, हमें अपनी स्थानीय बोली पर गर्व करना चाहिए। दूसरी भाषाएं सीखना अच्छी बात है श्रोता साथियों, लेकिन अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों को महत्व देना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बच्चे किसी भी समाज का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आने वाले समय में हमारी कई परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। इसलिए घर में बच्चों को लोक कथाएं सुनाएं, उन्हें स्थानीय गीत सिखाएं, गांव के इतिहास के बारे में बताएं, परंपराएं व्यंजन बनाना सिखाएं, बुजुर्गों के अनुभव सुनने के लिए प्रेरित करें, गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी बढ़ाएं। श्रोता साथियों, स्कूल और सामुदायिक रेडियो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: संस्कृति को बचाने का मतलब यह नहीं है श्रोता साथियों कि हम पुराने समय में वापस चले जाएं। हमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: मोबाइल से लोकगीत की रिकॉर्डिंग की जा सकती है, पुराने व्यंजनों की विधि रिकॉर्ड की जा सकती है, बुजुर्गों के अनुभवों के वीडियो बनाए जा सकते हैं, गाँव की पुरानी जो कहानियां हैं उन्हें लिखकर सुरक्षित किया जा सकता है, लोक नृत्य और पारंपरिक कला को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और यही काम सामुदायिक रेडियो भी बहुत ही प्रभावी ढंग से कर सकता है और वो कर भी रहा है।
0: जी
1: रेडियो
0: हाँ।
1: पर हम जैसा कि मनीषा, गांव के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, स्थानीय कलाकारों को मंच देते हैं।
0: जी हाँ।
1: और गांव की परंपराओं से जुड़ी कहानियों को आवाज दे सकते हैं। तो
0: जी
1: इन
0: हाँ।
1: सारी चीजों को लेकर जिस तरीके से हम जागरूकता लोगों में फैलाते हैं, वैसे सभी लोगों को इनको लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव की संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव। पेड़ पौधे लगाना, तालाब, कुएं, खेती, पशु पक्षी और मिट्टी ग्रामीण जीवन का हिस्सा रहे हैं। पुराने समय में श्रोता साथियों, गाँव में जल स्रोत और पेड़ों का विशेष महत्व माना जाता था।
1: बिल्कुल,
0: आज जल संकट और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं वो बढ़ रही है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, प्रकृति के प्रति सम्मान करने वाली ग्रामीण परंपरा हमें यह सीख देती है कि वर्षों का जो जल संरक्षण, हमें जल संरक्षण करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जल स्रोतों को बचाना चाहिए, उनकी सफाई करनी चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता जैसी अच्छी आदतें हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि हम पुरानी चीज सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाती क्योंकि वह पुरानी है। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए यह भी देखना चाहिए कि कौन सी परंपराएं समाज और समानता, स्वास्थ्य और मानव सम्मान को बढ़ावा देती हैं और कौन सी परंपराएं समय के साथ बदलने के लिए जरूरी है। अच्छी परंपराओं को बचाएं, उपयोगी परंपराओं को आगे बढ़ाएं और जो प्रथाएं किसी व्यक्ति के अधिकार या सम्मान को नुकसान पहुंचाती है श्रोता साथियों, उसमें सकारात्मक बदलाव लाएं। संस्कृति तभी जीवित रहती है जब वह समय के साथ आगे बढ़ती है। साथियों, संस्कृति केवल संस्कार, संस्था या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक परिवार अपने घर से शुरुआत कर सकता है।
0: जी
1: एक
0: हाँ।
1: शिक्षक बच्चों को स्थानीय संस्कृति के बारे में बता सकता है, एक बुजुर्ग अपना अनुभव युवाओं के साथ साझा कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: एक युवा मोबाइल के माध्यम से हम कह सकते हैं मनीषा कि लोकगीत और कहानियां सुरक्षित कर सकता है। एक महिला पारंपरिक व्यंजनों और घरेलू ज्ञान को असली पीढ़ी तक पहुँचा सकती है, अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकती है। और एक गांव मिलकर अपनी संस्कृति को, इतिहास को दस्तावेज के रूप में सुरक्षित भी रख सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि गांव की परंपरा और संस्कृतियां हमारे समाज की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें हमारे पूर्वजों के अनुभव, जीवन शैली, प्रकृति के प्रति सम्मान और साथ ही श्रोता साथियों, रिश्तों की गर्माहट छिपी होती है जो हमारे अंदर सहयोग की भावना विकसित करती है। साथ ही साथियों, हम देखते हैं कि गांव की संस्कृति हमें अपनी जड़ों से जोड़कर रखती है। है और हमारी पहचान बना के रखती है। हम देखते हैं कि आज का समय है वो बदल रहा है और गाँव की आधुनिकता है उस पर भी श्रोता साथियों हम देखते हैं कि उनकी संस्कृतियां हैं वो कम होती जा रही हैं और विकास भी श्रोता साथियों आवश्यक है, इसलिए हमें अपनी संस्कृतियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए श्रोता साथियों हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। जो अच्छी परंपराएं होती हैं वो श्रोता साथियों हमारे बच्चों में और युवा साथियों में लोगों का सम्मान कैसे करना है, किस प्रकार रहना है लोगों के बीच और हमारी संस्कृति है वो हमारे गाँव के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें उन्हें बताकर हमारे जो संस्कृतियां हैं उन्हें वापस जीवित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पाए, यही श्रोता साथियों, संस्कृति केवल सरकार, संस्था या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आज अपने घर में किसी बुजुर्ग से 3 सवाल हमें जरूर पूछने चाहिए। पहला यह कि हमारे गाँव की ऐसी कौन सी परंपरा है जो आज कम होती जा रही है। दूसरा ये कि बचपन में कौन से लोकगीत, कहानियां या त्योहार सबसे ज्यादा मनाए जाते थे। तीसरा, ऐसी कौन सी अच्छी परंपरा है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाना चाहिए। उनके जवाब सुनिए और परिवार के बच्चों को भी बताइए, शायद आपको अपने ही घर में अपनी संस्कृति की कोई ऐसी कहानी मिल जाए जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना। तो साथियों, गांव की संस्कृति कोई बीते समय की चीज नहीं है, यह हमारे वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का आधार है। हमारी बोली हमारी पहचान है, हमारे लोकगीत हमारी भावनाएं हैं, हमारे लोक नृत्य हमारी एकता है, हमारे पारंपरिक भोजन हमारी जीवन शैली है, हमारे त्योहार में हमारी खुशियां हैं और हमारे बुजुर्गों के अनुभव में हमारी पीढ़ियों का ज्ञान छिपा है। अपनी परंपरा को केवल याद न रखें बल्कि उन्हें समझे, सुरक्षित करें और नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस गांव को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है वह गांव अपनी पहचान को कभी नहीं खोने देता। परंपरा हमारी जड़ें हैं, संस्कृति हमारी पहचान है और नई पीढ़ी उसका भविष्य है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि परंपरा का अर्थ श्रोता साथियों केवल किसी पुराने रीति रिवाजों को दोहराना नहीं है। परंपरा उस ज्ञान, व्यवहार, कला और जीवन पद्धति का नाम ही जिसे समाज में लंबे समय तक अपनाता है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता है। श्रोता साथियों, गांव में परंपरा का संबंध जीवन के लगभग हर क्षेत्र में रहा है। घर बनाने की शैली, खेती करने के तरीके, भोजन बनाने की विधि, विवाह, गीत, त्योहारों की तैयारी, अतिथि संस्कार, सामाजिक सहयोग और स्थानीय भाषा, इन सभी में परंपरा दिखाई देती है। हम देखते हैं कि कई परंपराएं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती है। जिस क्षेत्र में श्रोता साथियों वर्षा कम होती है वहाँ पानी बचाने की अलग परंपरा विकसित होती है। जिस क्षेत्र में श्रोता साथियों फसल अधिक होती है वहाँ इससे जुड़ते और भोजन को लेकर उत्सव मनाए जाते हैं। इसी प्रकार श्रोता साथियों, ग्रामीण परंपराएं अपने क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक

0: परिस्थितियों की पहचान होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि किसी भी गांव की समृद्धि केवल इस बात से तय नहीं होती कि वहां कितने पक्के मकान हैं, कितनी सड़कें हैं, कितनी आधुनिक सुविधाएं पहुंचती है। गाँव की असली समृद्धि इस बात में छिपी होती है कि वहां के लोग अपनी सामूहिक स्मृतियों, पारंपरिक ज्ञान, कला, भाषा और सामाजिक मूल्यों को कितना संभाल कर रखते हैं। समय बदलना प्रकृति का नियम है और बदलाव को अपना ना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आज हमारे बच्चे नई तकनीक सीख रहे हैं, नए व्यवसायों की ओर बढ़ रहे हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है श्रोता साथियों, लेकिन इसी विकास के साथ अगर वे अपने गांव की मिट्टी, अपनी बोली, अपने लोकगीत, अपने पारंपरिक हुनर और अपने बुजुर्गों के अनुभव से भी जुड़े रहें तो उसका विकास और अधिक मजबूत आधार पर होगा।
0: जी हाँ,
1: हमें अपनी संस्कृति को केवल त्योहारों के दिनों में याद करने की जरूरत नहीं है, इसे हमें अपनी रोजमर्रा के व्यवहार में जीवित रखना चाहिए। घर में बच्चों से अपनी स्थानीय बोली में बातचीत करनी चाहिए, पुराने गीतों और कहानियों से सुनना चाहिए, पारंपरिक कला और प्रोत्साहना, इन सारी चीजों को महत्व देना चाहिए, स्थानीय कलाकारों का सम्मान करना चाहिए, गांव के इतिहास को सुरक्षित रखना चाहिए। ये छोटे छोटे प्रयास आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारे कार्यक्रम का पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार
0: साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह ग्यारह से एक बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपनी फरमाइश की गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए जुड़ रहे हैं और आप भी आपकी फरमाइश की गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारी फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडपुर सिटी से। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, गीत के बोल ही लड़की बड़ी अनजानी है। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घुड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी साथी जुड़ रहे हैं जो भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी और ईशान जी चीपा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, यजस्वी और हसीना पाटीदार। इस गीत के अनुरोध करता है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, गीत के बोल हैं लड़की बड़ी अनजानी है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम की फरमाइश का पहला गीत तो हमने सुनी लिया है, जो कि था लड़की बड़ी अनजानी है, और ये फरमाइश हमारे बीच आई थी पंडपुर सिटी से। अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोपर गाँव से। फिल्म का नाम है बागी। गीत के बोल हैं, चांदनी रात ही तू मेरे साथ है। इस गीत की फरमाइश करता है सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, सेवगांव से जुड़ना चाह रहे हैं श्री राम और उषा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से राम भाऊ, लक्ष्मण और भरत जी, शत्रुधन और नारायण भाऊ, और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी। इस गीत की अनुरोध करता है मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद मुरली वर्मा, राजेंद्र जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा और दिशा जी गोस्वामी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, चांदनी रात ही तू मेरे साथ है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है ठोकर, गीत की बोल ही मैं ढूंढता हूँ जिसको। इस गीत को आवाज दी है मुकेश कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है श्याम केटे, वंदना केटे, कार्तिक केटे, भाविका केटे और केटे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। ऐसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका जी रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है गिरहिड़ी झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत और सादिया जी। इस गीत के अनुरोध करता है जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलिस जी डिकिस्ट्रो। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही मैं तुझे ढूंढता हूँ। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकट रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नेपानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है आनंद, गीत के बोल हैं मैंने तेरे लिए ही। इस गीत को आवाज दी है मुकेश कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशील शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा से अब्दुल गफार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जियाउल हक डावर जी, मोहम्मद उमर जी और राजेंद्र कटारे जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा मध्य प्रदेश से बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी सिकरा डावर। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं शेख शहीद रही अनस भाई जी। और भी साथी जुड़ना चाह रही है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया और तमन्ना जी भाटिया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडुरवारा से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल हैं रब को याद करूं। इस गीत की फरमाइश करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, नरिन नेताम, कुसुम जी नेताम। इस गीत की अनुरोध करता है वासी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। इस गीत की अनुरोध करता है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी जी। धनोरे तेलीवाला से जुड़ना चाह रहे हैं निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत ये बोल ही रब को याद करूं। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाखोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है काजल, गीत के बोल हैं मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी और शिवन्या जी गोस्वामी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से, कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रही मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांची अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रही हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जी जाधव। इस गीत के अनुरोध करता है नागपुर से वैशाली, एकांता और कुमारी ध्वनि जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाफराबाद मराठवाड़ा से। फिल्म का नाम है घायल, गीत के बोल हैं दिल साथ नहीं जब से पागल ये जवानी है। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, जंगू तायल राजे यादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्व देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवी जी और प्रणाली जी देशमुख। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा अब जहां जी। इस गीत के अनुरोध करता है नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगले, सोपा निगले, आशीष मेहकर जी। अकोट से जुड़ना चाह रहे विनायक भेंडे, श्रीमती मंगला जी भेंडे, शुभम जरी और पवन जी, सजीव जी। डबकी रोड अकोला से जुड़ना चाह रहे हैं शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। यतला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शंकरलाल जेशवाल, गणेशलाल जेशवाल, शिवप्रसाद जेशवाल, अपनव जेशवाल, दुर्गेश्वरी जेशवाल, राखी जेशवाल और तृप्ति जी जेशवाल। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से रविन्द्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत और कौर छावड़ा जी, स्वीटी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल साथ नहीं जब से पागल ये जवानी है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटिया कला दुर्ग से। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत की फरमाइश करता है संजय शाहू, सुशांक शाहू, सुजीता जी शाहू और सीमा जी शाहू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रंजित भाटिया, मयंक जी भाटिया। इस गीत की अनुरोध करता है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से अभी पाल, जीप सिंह पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांशी और पाल परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशी मुणत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और दिलीप कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों के फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है बेवफा, गीत की बोल ही मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। इस गीत की फरमाइश करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहोई, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित आहूजा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को, गीत के बोल ही मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्चर। आप सभी का साथी हूं, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश जो है उसमें हम आपके मनपसंद गीत आप सभी को सुनवाते हैं। अगर आप भी आपकी फरमाइशों के गीत को सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9414082643। तो साथियों, फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं, एक मुलाकात जरूरी है सनम। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। फरमाइश करता है इस गीत की, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव और भी साथी ही जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला शानू, मानू बब्बन, मुनु कान्हा, हरिप्रिया। नजुडवारा उत्तर प्रदेश से है मास्टर खिल्लू परवेश, बेगम इमरान अनास, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और भी दोस्त हैं। जौनपुर से है इरशाद अहमद अंसारी, कमरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, असरा तबस्सुम। बनारस से है मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन। सहारनपुर से है जोन, रुचि, पर्ल, अविलेश। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, एक मुलाकात जरूरी है सनम।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसे भी अगली फरमाइश आई है। गीत के बोल हैं कहो ना प्यार है। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फरमाइश करता है इस गीत की पूना जक्सन से है अंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत। उत्तर प्रदेश से है राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव। अनुरोध करता है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, यीशु खुराना। अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना ताई गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शिंडे जी, प्रतिभा गुड़ाने, महेश राम टेके। अनुरोध करता है जगमोहन सी प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, बागपत से हैं ये। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं दीपक खटक, प्रमिला खटक। चंद्रनगर से हैं सुरेश डोमेंद्र, सोनाली डोमेंद्र, डोली मिंसा और प्रभा मिंसा बालोद से हैं। तो आइए साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल हैं गोरी है कन्हैया। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। फरमाइश करता है इस गीत की, जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित हुजा और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों, नाम बता दें आप सभी को। बाबा साहेब कणकर, सारा भाई कणकर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी, पूरा कणकर परिवार है, इसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश से है श्रीमती जयवंती केवट, बत्सर से है पूनम नायडू, सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला राठौर, श्रीमती गिरजा राठौर, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी वेदही जोशी, इरशाद अहमद अंसारी, कमरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, हजरत तबस्सुम, जौनपुर से हैं ये, बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन, मराठावाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और राम भाव तादली, कश्मीर से हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और केशरुद्दीन, सखी शैली ग्रुप बिटशर्ट से हैं जयश्री मैतरी, कविता, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुलथे, मंजू परदेसी, मीरा भीसी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

साथियों अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसी बीच अगली फरमाइश आई है फिल्म का। साथियों अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है दिल सी। फरमाइश का गीत है छैया छैया। फरमाइश करता है इस गीत की सनावत से है मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद इसहाक बब्बू डब्बू, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों नाम बता दें आप सभी को, नारायण खर्ची, ललिता खर्ची, गणेश खर्ची, कार्तिक, संजना परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं ये। चौराहा शबाजगंज से है सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुभेद चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा, शिवानी चौरसिया, पवन गोड, योगेंद्र नायक, कासगंजी। तो आइए साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है छैया छैया।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत के बोल हैं भंवरे ने खिलाया फूल। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। फरमाइश करता है इस गीत की मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। फाजिलगा पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। अनुरोध करता है साथियों इस गीत की। छत्तीसगढ़ से हैं चन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं साथियों। मुरादाबाद से है महबूब दुकानदार, बेगम शायबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, बारिस अंसारी, बेटी अली शिफा अंसारी, माहिनूर अंसारी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वेदही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव। छत्तीसगढ़ से हैं पूनम नायडू जी। तो आइए साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। गीत के बोल हैं, मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतज़ार है। फरमाइश करता है इस गीत के आगरा से हैं श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया वीर और अबीर चौरसिया। कानपुर से हैं श्रीमती सुजाता चौरसिया, शंकर चौरसिया, पीहू दिया चौरसिया। इसी के साथ और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों, नाम बता दें आप सभी को। सुभाष सिंह चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी, मुस्कान अनुष्का, भवानी चक्रधारी, ये छत्तीसगढ़ से हैं। गुजरात गांधी ग्राम से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोरी। अनुरोध करता है इस गीत के लूरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकान मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन, एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों।

0: सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, जरूरत से ज्यादा सोच विचार न करें, काम पर ध्यान दें और उसका आनंद लें। श्रोताओं, युवा अवस्था जीवन का वो दौर है जब हमारे सामने सपने भी होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे रास्ते भी, पढ़ाई, करियर, नौकरी, व्यवसाय, रिश्ते, भविष्य और समाज, इन सभी को लेकर हमारे मन में तरह तरह के सवाल चलते रहते हैं। सोचना स्वाभाविक है और सही निर्णय लेने के लिए सोच विचार जरूरी भी है।
0: जी जी।
1: लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब सोच विचार हमारी तैयारी का हिस्सा न रहकर चिंता का कारण बन जाता है।
0: जी हाँ।
1: तो आज हम बात करेंगे इसी विषय को लेकर कि सोचिए जरूर, लेकिन इतना नहीं कि सोचते सोचते काम करने का समय ही निकल जाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस विषय को लेकर बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाकर हम दोस्तों को पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ हम करें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ चुका है कि हम बात कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सोच विचार हमें नहीं करना है बल्कि हमारे काम पर ध्यान देना है और उसका आनंद लेना है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले एक बहुत अच्छी बात हमारे युवा साथियों को बताई थी कि सोचिए जरूर, लेकिन इतना नहीं कि सोचते सोचते काम करने का समय ही निकल जाए।
1: बिल्कुल
0: साथियों, कई बार हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके परिणामों के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि काम शुरू ही नहीं कर पाते। मन में ढेर सारे सवाल आते हैं, जैसे कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूँ, अगर मेरी मेहनत का परिणाम मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। साथियों, ऐसे सवाल बार बार मन में घूमते रहते हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि सोच विचार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी परीक्षा की तैयारी करनी है तो योजना बनाना भी जरूरी है। कोई करियर चुनना है तो उसके बारे में जानकारी लेना भी जरूरी है।
0: जी।
1: कोई नया काम शुरू करना है तो उसके फायदे नुकसान समझना भी जरूरी है। लेकिन एक सीमा के बाद वही सोच हमें आगे बढ़ने के बजाय रोकने लगती है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए श्रोताओं की। मान लीजिए किसी युवा को भाषण देना है, अब वो सोचता है कि उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किन बातों का ध्यान रखना है। ये सकारात्मक सोच है, लेकिन अगर वो बार बार यही सोचता रहे अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेरी आवाज कांप गई तो, और इसी डर के कारण तैयारी के बावजूद मंच पर जाने से बचने लगे, तो ये जरूरत से ज्यादा सोच विचार है।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए श्रोताओं, सोच हमें रास्ता दिखाए लेकिन रास्ते पर चलना हमारा काम है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि युवा साथियों के सामने अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वे भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं। साथियों, हम चाहते हैं कि हमें पहले से पता हो कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जिंदगी कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका अगला पन्ना पहले ही पढ़ लिया जाए।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम पूरी मेहनत कर सकते हैं, अच्छी योजना बना सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमारे नियंत्रण में है। दोस्तों, परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में जरूर होता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारे युवा साथी विद्यार्थी हैं तो श्रोता साथियों, आपका काम है पढ़ाई करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और नियमित अभ्यास करना। परीक्षा में क्या परिणाम आएगा इसकी चिंता करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा।
1: बिल्कुल कशिश, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका काम है सही दिशा में मेहनत करना। हर दिन ये सोचते रहना कि नौकरी मिलेगी या नहीं आपकी ऊर्जा कम कर सकता है। इसके बजाय आज क्या पढ़ना है, कितना अभ्यास करना है और अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाना है, इस पर हमें ध्यान देना है। कई युवा किसी काम को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। वे सोचते हैं कशिश कि थोड़ा और सीख लूं, फिर करूंगा, पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लूं, फिर कोशिश करूंगा, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तब शुरुआत करूंगा। लेकिन कई बार सही समय का इंतजार करते करते शुरुआत का समय ही निकल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हर काम शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता श्रोताओ, शुरुआत करने के बाद ही अनुभव मिलता है। अनुभव से गलतियां समझ आती है और गलतियों से सुधार का रास्ता मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए किसी काम को शुरू करते समय श्रोताओं खुद से ये मत पूछिए कि क्या मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बल्कि ये पूछिए कि क्या मैं शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। अगर जवाब हाँ है तो पहला कदम जरूर उठाइए।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही जब हमारा ध्यान श्रोता साथियों एक साथ बहुत सारी चीजों में बढ़ जाता है तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचते हैं और वर्तमान काम का आनंद नहीं ले पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, लेकिन साथ ही मोबाइल, सोशल मीडिया, भविष्य, दोस्तों और दूसरी चिंताओं के बारे में भी सोच रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में साथियों आपका शरीर किताब के सामने बैठा है लेकिन आपका मन कहीं और घूम रहा है। इसलिए एक समय में एक काम पर ध्यान देने की आदत बहुत महत्वपूर्ण होती है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: जब पढ़ाई करे साथियों तो पढ़ाई पर ध्यान दे, जब कोई रचनात्मक काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह जुड़ जाएं, जब परिवार के साथ हो तो उस समय को परिवार के साथ बिताएं, और जब आप आराम कर रहे हो तो बेवजह अपराध बोध महसूस न करें।
1: बिल्कुल,
0: काम को केवल जिम्मेदारी समझकर करना जरूरी है। जागृति जी, उसमें रुचि और आनंद खोजना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे श्रोता साथियों के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो बात कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा सोच विचार न करें, काम पर ध्यान दें और उसका आनंद लें।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हम बात कर रहे थे जरूरत से ज्यादा सोच विचार न करें, काम पर ध्यान दें और उसका आनंद ले विषय को लेकर। यही हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं कि हम अक्सर सफलता को केवल परिणामों से जोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें लगता है कि अच्छे नंबर आए तो सफलता, नौकरी मिली तो सफलता, पुरस्कार मिला तो सफलता, लेकिन सफलता की यात्रा में मिलने वाले छोटे छोटे अनुभव भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम कोई नया हुनर सीख रहे हैं तो हर दिन थोड़ा बेहतर होना भी उपलब्धि है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें नई चीज सीखना भी उपलब्धि है। अगर हमने अपनी किसी पुरानी कमजोरी पर काम किया है तो ये भी सफलता है।
1: जी जी।
0: जब हम केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देते हैं तो पूरी यात्रा तनावपूर्ण लग सकती है, लेकिन जब हम प्रक्रिया को समझते हैं और उसका आनंद लेते हैं तो वही यात्रा खूबसूरत बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो हम आपको कहना चाहेंगे साथियों कि काम को बोझ नहीं, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि आज सोशल मीडिया के दौर में तुलना करना बहुत आसान हो चुका है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हम दूसरों की सफलता देखते हैं और अपने जीवन को उससे जोड़ने लगते हैं। जैसे कि किसी की नौकरी लग गई, कोई अपना व्यवसाय शुरू कर चुका है, किसी को पुरस्कार मिल गया है, कोई विदेश चला गया है, इन सबको देखकर हम सोचने लगते हैं कि मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है जागृति जी कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें दूसरों के जीवन के दिखाई देने वाले हिस्से की तुलना अपने पूरे जीवन से नहीं करनी चाहिए। साथियों, आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी और से आगे निकले, बल्कि आपका लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि आप कल से आज बेहतर बने।
0: बिल्कुल, और जरूरत से ज्यादा सोचने की एक बड़ी वजह असफलता और गलती का डर भी है कशिश। लेकिन गलती जीवन का अंत नहीं है श्रोताओं, गलती हमें बताती है कि किसी काम को अगली बार बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है।
1: जी,
0: युवाओं की समझना बहुत जरूरी है कि गलती करने से ज्यादा नुकसान कभी कभी कोशिश ही न करने से होता है। अगर श्रोताओं आपने कोई निर्णय लिया है और वो आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा तो खुद को दोष देने के बजाय उससे सीखिए, पूछिए मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। इस तरह सोचने से असफलता भी अनुभव में बदल सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथी श्रोता साथियों, हमारा मन अक्सर दो जगहों पर भटकता है, या तो बीते हुए समय में या आने वाले समय में।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, बीते समय की गलतियों को बार बार याद करना हमें परेशान कर सकता है और भविष्य की चिंता साथियों हमें वर्तमान से दूर कर सकती है। इसलिए खुद को बार बार वर्तमान में वापस लाना आप सीखिए। अपने आप से पूछिए कि इस समय मेरे सामने जो काम है मैं उसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। साथियों, यही सवाल आपकी ऊर्जा को चिंता से निकाल कर कार्रवाई की ओर ले जा सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य कभी कभी हमें डराने लगते हैं कशिश, इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। साथियों, अगर आपको कोई परीक्षा पास करनी है तो पूरे पाठ्यक्रम के बारे में एक साथ सोचकर परेशान होने के बजाय आज के अध्ययन का लक्ष्य तय कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर आपको कोई नया कौशल सीखना है श्रोताओं तो हर दिन थोड़ा समय उसके लिए जरूर निकालिए। जब छोटा लक्ष्य पूरा हो कशिश, तो हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि खुद की मेहनत को पहचानना, यही छोटी छोटी उपलब्धि आत्मविश्वास बढ़ाती है।
1: बिल्कुल,
0: बड़ी सफलता कई बार छोटी छोटी लगातार कोशिशों से ही हमें मिलती है।
1: जी हाँ, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि खुद को थोड़ा आराम देना भी जरूरी है। जैसे कि काम पर ध्यान देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति हर समय काम में ही लगा रहे। जागृति जी, आराम भी जीवन का एक जरूरी हिस्सा होता है। लगातार साथियों तनाव में रहकर काम करने से आपका मन थक सकता है, इसलिए पढ़ाई या काम के बीच उचित विश्राम, पर्याप्त नींद, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, अपनी पसंद की रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जब मन शांत होता है तो हम अपने काम पर ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दे पाते हैं। जागृति जी,
0: जी हाँ, तो कशिश हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन जरूरत से ज्यादा सोच विचार में उलझने के बजाय आगे बढ़ने में बीते तो कुछ बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। पहली बात ये कि सोचिए लेकिन समय सीमा के साथ, किसी निर्णय के लिए जरूरी जानकारी जुटाइए और फिर निर्णय लेकर आगे बढ़िए।
1: बिल्कुल,
0: दूसरी बात ये कि जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दीजिए, दूसरों की राय और भविष्य के हर परिणाम को नियंत्रित करना संभव है। तीसरी बात ये है कि शुरुआत से मत डरिए, हर विशेषज्ञ कभी न कभी शुरुआत करने वाला व्यक्ति था।
1: बिल्कुल,
0: चौथी बात, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, पहले शुरुआत कीजिए फिर सीखते हुए सुधार कीजिए। पांचवी बात, अपनी तुलना अपने पुराने रूप से कीजिए, आपने क्या सीखा और कितना आगे बढ़े ये अधिक महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: एक समय में एक काम करने की आदत आपकी एकाग्रता बढ़ा सकती है, साथ ही हर प्रयास आपको कुछ न कुछ नया सिखाती है, गलती सुधार का रास्ता दिखा सकती है और हर छोटी प्रगति आपको बड़े लक्ष्य के करीब ले जाती है। जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते के अनुभव, सीख

0: तो नहीं खोना है, काम शुरू करना है, सीखते रहना है और अपनी यात्रा का आनंद लेते जाना है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जिंदगी केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि मंजिल की ओर बढ़ते हुए हर कदम से सीखने और उसे महसूस करने का नाम भी है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाय तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा थकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बच्चों को डिजिटल दुनिया से सुरक्षित कैसे रखें।
0: बिल्कुल,
1: जरा सोचिए श्रोता साथियों कि आज हमारे बच्चों की दुनिया कितनी बदल गई है। कभी बच्चे खेल के मैदान में दोस्तों के साथ समय बिताते थे, किताबों में कहानियां खोजते थे और दादा दादी से किस्से सुनते थे। आज कशिश उनके हाथ में मोबाइल है, सामने इंटरनेट की दुनिया है और एक क्लिक पर पढ़ाई, खेल, वीडियो, मनोरंजन और न जाने कितनी जानकारी उपलब्ध है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है कि क्या हमारा बच्चा डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करना सीख रहा है या डिजिटल दुनिया धीरे धीरे हमारे बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करने लगी है।
0: जी हाँ,
1: क्या बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है हमें पता है? क्या वह अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन बात कर रहा है? क्या वह अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा तो नहीं कर रहा? क्या पढ़ाई के नाम पर मोबाइल हाथ में लेकर घंटों वीडियो या गेम तो नहीं खेल रहा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारा बच्चा किसी ऑनलाइन परेशानी में फंसने पर हमसे बेझिझक बात कर पाएगा? तो साथियों, डिजिटल दुनिया अपने आप में बुरी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: इंटरनेट बच्चों के लिए ज्ञान, शिक्षा, रचनात्मक और नए अवसरों का बड़ा माध्यम बन सकता है। लेकिन कशिश, समस्या तब शुरू होती है जब बच्चों को इसके सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: और बड़े केवल मोबाइल छीनने और डांटने को समाधान समझ लेते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना शुरुआत यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ पहले करें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं। साथियों, विषय है बच्चों को डिजिटल दुनिया से सुरक्षित कैसे रखा जाए।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले बहुत सारी बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई थी, यही अब जानते हैं कि डिजिटल दुनिया बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
1: जी जी,
0: तो श्रोता साथियों, आज मोबाइल और इंटरनेट केवल मनोरंजन के साधन नहीं रह गए हैं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं, विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में जान सकते हैं। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: साथ ही चित्रकारी और संगीत सीख सकते हैं और अपनी रचनात्मकता को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए तो डिजिटल माध्यम कई बार ऐसी जानकारियों तक पहुँच का रास्ता बन सकता है जो उनके आस पास आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन अंजलि जी, जिस तरह सड़क पर चलते समय यातायात के नियम जानना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट इस्तेमाल करते समय भी कुछ डिजिटल सुरक्षा नियम जानना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बच्चों को केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है साथियों कि मोबाइल मत चलाओ, बल्कि उन्हें ये भी समझाना जरूरी है कि मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, यही कशिश अब बात आती है माता पिता की भूमिका की। श्रोता साथियों, बच्चों के डिजिटल व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले माता पिता को उनके साथ दोस्ताना रिश्ता बनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: अगर बच्चा यह सोचता है कि मोबाइल पर कुछ गलत हो जाने पर बताने से उसे डांट पड़ेगी या मोबाइल हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा, तो वह समस्या छिपा सकता है। इसलिए माता पिता बच्चों से नियमित रूप से पूछें, क्या आप इंटरनेट पर क्या नया देख रहे हैं, कौन सी चीज मिली जो तुम्हें समझ नहीं आई, किसी ने ऑनलाइन तुमसे बात की। ऐसे सवाल पूछने का उद्देश्य श्रोता साथियों बच्चों की जासूसी करना नहीं है, बल्कि उनके लिए ऐसा माहौल बनाना है जहां वह किसी परेशानी में सबसे पहले परिवार के पास आए।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से समझाना चाहिए कि इंटरनेट पर हर जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है। उन्हें हमें बताना है कि अपना पूरा पता, फोन नंबर, स्कूल की पूरी जानकारी, पासवर्ड, निजी तस्वीरें, पहचान से जुड़ी जानकारी, परिवार की निजी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा न करें।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को यह भी समझाएं कि इंटरनेट पर कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा या दोस्ताना दिखाई दे, इसका मतलब यह नहीं कि वह वास्तव में वही व्यक्ति है जो वह खुद को बता रहा है।
0: बिल्कुल,
1: बड़े बच्चों को मजबूत पासवर्ड रखने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि पासवर्ड किसी दोस्त या ऑनलाइन जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। जहां संभव हो खातों में अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा का इस्तेमाल करें। बच्चों को यह भी बताएं कि किसी लिंक, संदेश और वेबसाइट पर जाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: एक छोटा सा नियम बच्चों को जरूर सिखाएं कि पासवर्ड निजी है, इसे साझा नहीं करना है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों ऑनलाइन गेमिंग सावधानी की, तो आज बच्चों में ऑनलाइन गेम बहुत ही लोकप्रिय है। अंजलि जी, खेलना अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन गेमिंग के दौरान भी सावधानी बहुत जरूरी होती है।
1: बिल्कुल,
0: साथियों बच्चों को ये समझाएं कि गेम में किसी अनजान व्यक्ति से व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की जा सकती, किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी व्यक्ति के कहने पर पैसे खर्च नहीं करने हैं, और सबसे जरूरी गेम खेलने के लिए तय समय का पालन करना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि गेम में हारना या जीतना वास्तविक जीवन की सफलता का पैमाना नहीं होता। मोबाइल की सबसे बड़ी समस्या कई बार उसका गलत उपयोग नहीं बल्कि उसका ज्यादा उपयोग होता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चा लगातार स्क्रीन पर रहता है तो उसके खेल, पढ़ाई, परिवार के साथ बातचीत, नींद और अन्य गतिविधियों का समय भी इससे प्रभावित हो सकता है। इसलिए परिवार में स्क्रीन के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए।
1: जी जी,
0: जैसे कि खाने के समय मोबाइल यूज नहीं करना है, पढ़ाई के समय केवल जरूरी डिजिटल सामग्री का ही उपयोग करना है, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनानी है, हर दिन कुछ समय बाहरी खेल के लिए निकालना है और परिवार के साथ बातचीत का समय भी सुनिश्चित करना है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, श्रोता साथियों को हम ये बताना चाहेंगे कि नियम केवल बच्चों के लिए नहीं होने चाहिए। अगर माता पिता खुद हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे और बच्चों को कहेंगे कि मोबाइल मत चलाओ, तो बच्चा बात से ज्यादा व्यवहार से सीखेगा।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,
2: चिटकी टक टक चिक टक चिटकी टक टक चिक टक चिटकी टक टक चिक।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमें बच्चों को डिजिटल दुनिया से अवगत करवाने की जरूरत है और कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो बच्चों को हमें बचपन से ही सिखानी है, जिसमें हमने ढेर सारी बातें जानी। गीत से पहले यही बात आती है, अनजान लोगों से ऑनलाइन दोस्ती में सावधानी। जी हाँ दोस्तों, बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। इंटरनेट पर उन्हें कोई दोस्ताना व्यक्ति मिलता है तो वे जल्दी बातचीत शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें हमें समझाना होगा कशिश कि ऑनलाइन मिला व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसका वास्तविक दोस्त हो। अगर कोई व्यक्ति निजी जानकारी मांगता है, फोटो मांगता है, मिलने के लिए कहता है, धमकाता है, डराता है या कोई बात छिपाने के लिए कहता है तो बच्चों को तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि मुश्किल परिस्थितियों में सच बताने पर उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, बच्चों को समझाएं कि इंटरनेट पर डाली गई तस्वीर या वीडियो आगे कहां तक पहुंच सकता है उसका अंदाजा लगाना हमेशा आसान नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अपनी या किसी दूसरे बच्चे की निजी तस्वीर बिना अनुमति साझा न करें। किसी की फोटो का मजाक बनाकर उसे आगे भेजना भी सही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को यह भी समझाना चाहिए कि ऑनलाइन भी वही सम्मान हमें रखना है जो हम आमने सामने रखते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथी श्रोता साथियों, हर ऑनलाइन जानकारी सच नहीं होती, ये भी हम अपने बच्चों को बताएं। जैसे कि इंटरनेट पर बहुत सारी उपयोगी जानकारी है लेकिन हर जानकारी सही नहीं होती। साथियों
0: जी जी,
1: बच्चे कोई खबर, वीडियो या दावा देखे तो उन्हें तुरंत विश्वास करने के बजाय सवाल पूछने की आदत आपको डलवानी चाहिए। जैसे कि ये जानकारी कहां से आई है, क्या यह विश्वसनीय स्रोत है, क्या किसी दूसरे भरोसेमंद स्रोत से भी इसकी पुष्टि हो सकती है। अंजलि जी, यही आदत बच्चों को गलत जानकारी और भ्रामक सामग्री से बचाने में मदद करेगी।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया में बच्चों को ऑनलाइन परेशान किया जाना एक गंभीर समस्या बन चुकी है। किसी बच्चे का मजाक उड़ाना, उसे अपमानित करना, उसके बारे में गलत गलत बातें फैलाना, बार बार परेशान करने वाले संदेश भेजना, यह उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। साथियों
0: जी जी,
1: अगर बच्चा अचानक मोबाइल से दूर रहने लगे, चिड़चिड़ा हो जाए, स्कूल या दोस्तों से दूरी बनाने लगे या किसी ऑनलाइन घटना के बाद बहुत परेशान दिखाई दे तो माता पिता को उसे प्यार से समझाना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसकी वजह से तुम्हें चुप रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ इंटरनेट पर बच्चे के सामने ऐसी सामग्री भी आ सकती है जो उसकी उम्र के लिए उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे डराने या शर्मिंदा करने के बजाय शांत रहकर समझाइए। बच्चों को बताएं कि गलत सामग्री दिखाई देना हमेशा उसकी गलती नहीं होती, लेकिन उसे आगे साझा नहीं करना चाहिए। उस पेज या खाते से दूर हो जाना चाहिए और भरोसेमंद बड़े को बताना चाहिए। माता पिता उम्र के अनुसार सुरक्षित खोज सामग्री नियंत्रण की सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं। श्रोता साथियों, डिजिटल सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार केवल तकनीकी नियंत्रण नहीं बल्कि बच्चे और माता पिता के बीच विश्वास है।
1: बिल्कुल,
0: हर दिन कुछ समय ऐसा रखें जहां बच्चा खुलकर बात कर सके, पूछे कि आज इंटरनेट पर तुम्हें क्या अच्छा लगा, कोई चीज परेशान करने वाली मिली, किसी ने ऐसा कुछ कहा जिससे तुम्हें असहज महसूस हुआ हो, और जब बच्चा कोई समस्या बताए तो पहले उसकी बात सुने।
1: बिल्कुल,
0: कई बार बच्चों को समाधान से पहले यह भरोसा चाहिए होता है कि कोई उसकी बात समझने वाला है। तो श्रोता साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें बच्चों को बताने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ कहना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया आज हमारे जीवन का हिस्सा है और हमारे बच्चे इससे पूरी तरह अलग रह नहीं सकते, बल्कि समझदारी जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करना हमें बच्चों को सिखाना है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कशिश, हमारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे के हाथ से हर समय मोबाइल छीन लिया जाए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मोबाइल उसके हाथ में हो लेकिन उसका नियंत्रण उसके समझदारी के पास हो।
1: जी हाँ।
0: बच्चों को केवल खतरे बताने से वह सुरक्षित नहीं होगा, उसे यह भी सिखाना होगा कि सही और गलत में फर्क कैसे करें, किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, अपनी निजी जानकारी की कीमत क्या है और परेशानी आने पर चुप रहने के बजाय मदद क्यों मांगनी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि साथियों, बच्चों को आप ये विश्वास दे कि डिजिटल दुनिया में कोई गलती या परेशानी हो जाए तो वो अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े के पास बिना डर के जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षा केवल तकनीक से नहीं आती अंजलि जी, सजगता और समझदारी के साथ साथ संवाद से भी आती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में साथियों हम बच्चों को डिजिटल दुनिया से डराए नहीं बल्कि उन्हें उसका समझदार उपयोगकर्ता बनाए
0: बिल्कुल। तो कशिश, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा अमरा हित भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रे रहो आपू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब नु घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि आपणे मिश्रित खेती नु हूँ महत्व है ने आ खेती आपणे हेते करी शका। तो आना विषय माते भाईन बुनो अमारी आप तकी कार्यक्रम में घणा कनी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू कर इने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोर कर आपड़ी वाते। तो भाईन बुनो आप हमरता रहेजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
3: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्र रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, सही प्रबंधन सफलता की पहली सीढ़ी होती है। श्रोताओं, समय हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देता है।
0: बिल्कुल।
1: पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है अंजलि, कोई अवसर छूट जाए तो हम कभी कभी दूसरा अवसर भी हमें मिल जाता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि सफल व्यक्ति समय को केवल घड़ी की सुइयों में नहीं बल्कि अपने जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी के रूप में देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समय का सही प्रबंधन सफलता की पहली सीढ़ी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों न हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं समय प्रबंधन को लेकर, कि समय प्रबंधन सफलता की पहली सीढ़ी है।
1: जी हाँ जागृति जी, जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था कि समय दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देता है। जैसे कि पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, वस्तु खो जाए तो फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन श्रोता साथियों, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ती रहती हैं और अपने साथ हमारे जीवन का एक एक पल लेकर जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय का सही प्रबंधन करना भी उतना ही आवश्यक है।
0: जी हाँ,
1: सच ही कहा गया है कि समय का सदुपयोग सफलता की पहली सीढ़ी है। यानी कि जागृति जी, समय प्रकृति की ऐसी अमूल्य संपत्ति है जो अमीर गरीब, छोटे बड़े, सफल असफल, सभी को समान रूप से मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। किसी सफल व्यक्ति को अधिक समय नहीं मिलता और न ही किसी सामान्य व्यक्ति को कम। अंतर केवल इतना होता है श्रोता साथियों कि सफल व्यक्ति अपने समय का बेहतर उपयोग सीख लेता है, जबकि कई लोग अपना बहुमूल्य समय बिना उद्देश्य के कार्यों में गंवा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए समय प्रबंधन केवल घड़ी देखने या समय सारणी बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन, प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने की कला है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम अक्सर धन को बहुत मूल्यवान समझते हैं, लेकिन वास्तव में समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने के बाद उसे मेहनत से दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। हम देखते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में समय का महत्व और भी अधिक है। पढ़ाई का समय अगर केवल मनोरंजन या आलस्य में निकल जाए तो बाद में पछतावा ही होता है। समय हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। सुबह का सूरज हमें ये संदेश देता है कि आज का दिन हमारे हाथ में है। हम चाहे तो इसे सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने में लगा सकते हैं, या इसे बिना उद्देश्य के व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए हर दिन को एक अवसर समझना होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि समय प्रबंधन का अर्थ है कि अपने उपलब्ध समय का इस प्रकार उपयोग करना कि आवश्यक कार्य उचित समय पर पूरे हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे हैं। इसमें यह तय करना शामिल है श्रोता साथियों कि कौन सा काम पहले करना है, किस काम के लिए कितना समय देना है और किन गतिविधियों में समय कम करना चाहिए। कह सकते हैं कि समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दिन भर केवल काम करता रहे। पर्याप्त आराम, परिवार के साथ समय, मनोरंजन, खेल और स्वयं के विकास के लिए समय निकालना भी अच्छे समय प्रबंधन का हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: यही समय प्रबंधन हमें व्यस्त नहीं बल्कि व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है वो अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता है। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो हम कितना भी तेज चले सही मंजिल तक पहुंचना कठिन हो जाता है। विद्यार्थी अगर ये तय करता है कि उसे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है तो वो पढ़ाई के लिए नियमित समय निकाल सकता है।
1: बिल्कुल।
0: युवा अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा, कौशल या करियर के लिए तैयारी कर रहा है तो उसे अपने लक्ष्य के अनुसार समय बांटना होगा। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना भी उपयोगी होता है श्रोताओं। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, दिन में हमारे सामने अनेक काम होते हैं लेकिन सभी काम समान महत्व के नहीं होते, इसलिए हमें प्राथमिकता तय करना सीखना चाहिए। जो काम सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद के लिए रखा जा सकता है और प्राथमिकता तय करने से हमारा ध्यान बिखरता नहीं है और महत्वपूर्ण समय जो है उसमें हम अच्छे कार्य जो हमारे महत्वपूर्ण है वो कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी के लिए परीक्षा की तैयारी, गृह कार्य, आवश्यक अध्ययन महत्वपूर्ण कार्य है। यदि वह पढ़ाई के समय लगातार मोबाइल चलाता रहे और बाद में समय की कमी होने पर पढ़ाई करे तो तनाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत यदि वह पहले से जरूरी कार्य पूरा करे तो फिर मनोरंजन के लिए समय निकल सकता है और जीवन अधिक व्यवस्थित हो पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समय प्रबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमें हमारी प्राथमिकताओं को तय करना जरूरी है और उसी अनुसार जब हम समय का प्रबंधन करते हैं तो हमारे महत्वपूर्ण कार्य समय पर हो पाते हैं। यही बात आती है समय बर्बाद करने वाली आदतों की। तो श्रोता साथियों, समय प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती समय की कमी नहीं बल्कि समय का गलत उपयोग है।
1: बिल्कुल।
0: आलस्य, अनावश्यक बातचीत, बिना उद्देश्य मोबाइल चलाना, लगातार सोशल मीडिया को देखते रहना, काम को टालना और बिना योजना के दिन बिताना हमारी उत्पादकता को कम कर सकता है। जागृति जी, कई बार हम कहते हैं कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, यही छोटी सी सोच आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: जब काम जमा होते जाते हैं तो तनाव बढ़ता है और कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए श्रोता साथियों, आज का काम आज करने की आदत विकसित करनी चाहिए। हर काम को अंतिम समय तक टालने के बजाय समय रहते पूरा करना बेहतर है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि समय प्रबंधन

0: उनकी शुरुआत एक छोटी सी योजना से की जा सकती है। श्रोताओं, सुबह या पिछली रात अगले दिन के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाई जा सकती है। इससे हमें पता रहता है कि दिन में क्या करना है। उदाहरण के तौर पर कोई युवा साथी अपने दिन में पढ़ाई, स्कूल या कॉलेज, खेल, परिवार, आराम और अन्य जरूरी गतिविधियों के लिए समय तय कर सकते हैं। योजनाएं बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए। श्रोताओं, ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसका वास्तविक रूप से पालन हम कर सके। योजना बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा लचीलापन भी होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अंजलि कि हर दिन परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। साथ ही कहना चाहेंगे कि टालम टोल की आदत से हमें बचना होगा। टालम टोल समय प्रबंधन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कल से शुरू करेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी मन नहीं है, ऐसी बातें धीरे धीरे हमारी आदत बन सकती है। दोस्तों,
1: बिल्कुल,
0: किसी बड़े काम को देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। अगर कोई विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाकर परेशान हो रहा है तो वह पहले छोटे अध्ययन सत्र से शुरुआत कर सकता है। श्रोताओं, एक बार जरूर आप शुरुआत कीजिए, आगे आगे आपके सारे कार्य आसानी से होते जाएंगे।
1: बिल्कुल शागृति जी, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन निरंतरता बड़ी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: आज तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल माध्यम शिक्षा और जानकारी के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन श्रोता साथियों, इनका अनियंत्रित उपयोग समय को तेजी से खर्च कर सकता है। इसलिए मोबाइल का उपयोग उद्देश्य के साथ करना चाहिए। पढ़ाई या किसी जरूरी काम के समय अनावश्यक सूचनाओं और मनोरंजन से दूरी बनाना उपयोगी हो सकता है। तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तकनीक का उपयोग करें, तकनीक हमारा समय नियंत्रित न करे।
0: बिल्कुल, और हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि कुछ लोग समय प्रबंधन का अर्थ केवल अधिक से अधिक काम करना समझते हैं। ये सही नहीं है। लगातार काम करते रहने से थकान बढ़ जाती है और कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: शरीर और मन को आराम देना भी जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना, खेल खेलना, व्यायाम करना, परिवार के साथ समय बिताना, मन को शांत रखने वाली गतिविधियां जीवन में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करती है अंजलि। और हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ और संतुलित व्यक्ति अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता है। इसीलिए श्रोताओं, समय प्रबंधन का उद्देश्य जीवन को बोझिल बनाना नहीं है बल्कि अधिक व्यवस्थित बनाना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात आती है कि विद्यार्थी जीवन में समय प्रबंधन की आदत भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करती है।
0: बिल्कुल,
1: विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ खेल, रचनात्मक गतिविधियां और आराम के लिए भी समय देना चाहिए। परीक्षा के कुछ दिन पहले पूरी पढ़ाई करने के बजाय श्रोता साथियों, नियमित अध्ययन अधिक प्रभावी होता है।
0: जी हाँ।
1: रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से विषयों को समझने और दोहराने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। विद्यार्थी यदि प्रतिदिन अपने कार्यों की समीक्षा करे और यह देखे कि आज उसने क्या पूरा किया है, क्या बाकी है, तो वह धीरे धीरे अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना सीख सकता है।
0: बिल्कुल,
1: युवा अवस्था भी जागृति जी जीवन निर्माण करने का महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय सीखी गई अच्छी आदतें भविष्य को मजबूत बना सकती है। युवाओं के सामने पढ़ाई, करियर, कौशल, परिवार और समाज से जुड़े अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। आज का युवा यदि अपने समय का उपयोग नई चीजें सीखने, कौशल विकसित करने, पढ़ने, स्वस्थ रहने और समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने में करता है तो वह अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती, सपनों को पूरा करने के लिए समय, मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।
0: जी हाँ अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों, समय प्रबंधन और अनुशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमने किसी काम का समय निर्धारित किया है तो उसे पूरा करने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। अनुशासन का अर्थ कठोर जीवन जीना नहीं है बल्कि अपने लक्ष्य के लिए सही निर्णय लेना है। कभी कभी मन मनोरंजन करना चाहता है अंजलि, लेकिन अगर जरूरी कार्य बाकी है तो पहले श्रोताओं, जिम्मेदारी पूरी करना अनुशासन है।
1: बिल्कुल,
0: छोटी छोटी अनुशासित आदतें आगे चलकर बड़े परिणाम देती है। हम देखते हैं कि हर दिन हमारी योजना के अनुसार हम नहीं चल सकते। कभी कोई जरूरी काम अचानक आ जाता है, कभी समय कम पड़ जाता है और कभी हमारी योजना पूरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में निराश होने के बजाय देखना होगा कि गलती कहाँ हुई है।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी काम में जरूरत से ज्यादा समय लग गया है तो अगली बार उसके लिए बेहतर योजना बनाई जा सकती है। समय प्रबंधन भी एक ऐसी कला है श्रोताओं, जिसे अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए एक दिन की असफलता को अपनी पूरी यात्रा की असफलता हमें नहीं मानना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हमें समय बचाना है, लेकिन समय को वास्तव में बचाकर रखा नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल,
1: जो समय हमारे पास है उसे केवल सही दिशा में लगाया जा सकता है। 1 घंटा पढ़ाई में लगाया जाए तो ज्ञान बढ़ सकता है, वही एक घंटा किसी उपयोगी कौशल को सीखने में लगाया जाए तो नई क्षमता विकसित हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: किसी जरूरतमंद की मदद में लगाया जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कितना समय है, बल्कि ये होना चाहिए कि मेरे पास जो समय है मैं उसका उपयोग किस तरीके से कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बातें की समय प्रबंधन को लेकर, तो अंत में यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय जीवन की वो पूंजी है जिसे खर्च तो किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए समय का सम्मान करिए, वास्तव में अपने जीवन का सम्मान करने के बराबर है।
1: बिल्कुल।
0: सफल व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के पास समय की मात्रा समान होती है अंजलि, लेकिन उनके समय के उपयोग का तरीका बहुत अलग होता है। सफलता के लिए प्रतिभा और मेहनत जरूरी है, लेकिन इन दोनों को सही दिशा देने का काम भी समय प्रबंधन करता है।
1: बिल्कुल।
0: हमें अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देखना है श्रोताओं। लक्ष्य तय करने हैं, प्राथमिकताएं निर्धारित करनी है, काम को टालने से बचना है, तकनीक का संतुलित उपयोग करना है और पढ़ाई, काम, आराम तथा परिवार के बीच भी संतुलन बनाए रखना है।
1: जी जी।
0: याद रखिए, घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती। जो व्यक्ति समय की चाल को समझकर उसके साथ कदम मिलाकर चलता है वही अपने सपनों की मंजिल के करीब पहुंचता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम में वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्चर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, मौसम में बदलाव आते ही हमारे आसपास कई लोग बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और सर्दी जुकाम जैसे परेशानियों से जूझते दिखाई देते हैं।
0: जी हाँ,
1: कई बार हम इसे सामान्य बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं तो कभी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेना शुरू कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आप जानते हैं कि बुखार खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर में किसी संक्रमण या दूसरी समस्या का संकेत हो सकता है?
0: जी हाँ,
1: वायरल संक्रमण के कारण होने वाला बुखार आम है, लेकिन इसके लक्षणों को समझना और सही समय पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों, हम यही जानेंगे कि वायरल बुखार क्या होता है, इसके कारण और लक्षण क्या हैं, घर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं वायरल

0: बुखार कारण, लक्षण और बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं?
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि बुखार हमारे शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। जब शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण होता है श्रोता साथियों, तो शरीर उससे लड़ने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा देता है। वायरल संक्रमण के कारण होने वाले बुखार को आम भाषा में श्रोता साथियों हम वायरल बुखार कहते हैं। यह किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि अलग अलग वायरस से होने वाले कई संक्रमणों से श्रोता साथियों बुखार का प्रमुख लक्षण है वो हमें दिखाई दे सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, जब शरीर में वायरस प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि शरीर की रोगों से लड़ने की जो व्यवस्था है उसे मुकाबला करती है। इस दौरान शरीर का तापमान बढ़ सकता है और यही कारण है कि बुखार को शरीर की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है।
0: जी हाँ,
1: हालांकि श्रोता साथियों हर बुखार वायरल नहीं होता। बुखार के पीछे बैक्टीरियल संक्रमण, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए केवल लक्षण देखकर स्वयं यह तय करना सही नहीं कि बुखार वायरल ही है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वायरल बुखार का कारण वायरस से होने वाले संक्रमण है। वायरस कई तरीकों से व्यक्ति में श्रोता साथियों प्रवेश कर सकता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आते हैं तो भी हमें यह बुखार हो सकता है। जब श्रोता साथियों कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो हम देखते हैं कि उसके आसपास संक्रमण है वो फैल जाता है। संक्रमित व्यक्ति के श्रोता साथियों करीब रहने से या उसके आसपास रहने से यह बुखार दूसरे लोगों में भी फैल सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ हाथों की सफाई न रखना। हम दिन भर में कई चीजों को छूते हैं। यदि हाथ संक्रमित सतह के संपर्क में आ जाए तो फिर वही हाथ आँख, नाक, मुँह पर चले जाते हैं तो कुछ संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है।
0: जी हाँ,
1: बाहर से आने के बाद और भोजन करने से पहले हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसी के साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों की बात करें तो श्रोता साथियों बंद या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कुछ श्वसन संबंधित वायरल संक्रमण आसानी से फैल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: संक्रमण के मौसम में विशेष सावधानी रखना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, आराम शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लगातार श्रोता साथियों थकान, कम आराम और श्रोता साथियों खराब खान पान हो तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को यह संक्रमण है वो जल्दी हो सकता है। हम देखते हैं कि वायरल बुखार के लक्षण वायरस और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सामान्य तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है, ठंड लगना या कपकपी हमें महसूस होती है, सिर दर्द होता है, शरीर की मांसपेशियां हैं वो दर्द करती है, थकान और कमजोरी आ जाती है, गले में खराश है वो बढ़ने लगती है, नाक बंद हो जाती है, खांसी, भूख कम लगना और कभी कभी अंजलि जी हम देखते हैं कि मतली या उल्टी भी हमें होने लगती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हर व्यक्ति को सभी लक्षण दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण है वो दिखाई दे सकते हैं तो श्रोता साथियों इसके माध्यम से हमें समझ जाना है कि इस व्यक्ति को वायरल बुखार है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वायरल बुखार के कुछ सामान्य लक्षण हमें दिखाई दे तो हमें तुरंत समझ जाना है कि हमें वायरल बुखार है और डॉक्टर से संपर्क करके हमें इसका इलाज करने की जरूरत है।
0: जी हाँ,
1: आगे हम जानेंगे कि बुखार होने पर और भी हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम हमारे साथियों को एक और प्यारे से गीत के साथ में यहाँ पर मनोरंजन करवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं अब बात करते हैं बुखार होने पर हम क्या करें। श्रोता साथियों, सबसे पहली बात है कि हमें घबराना नहीं है और शरीर को आराम देना है।
1: जी हाँ,
0: बुखार के दौरान शरीर संक्रमण से लड़ने में ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए मनीषा पर्याप्त नींद और आराम लेना जरूरी है। बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से कमजोरी भी बढ़ सकती है, इसलिए आराम करें श्रोता साथियों और पर्याप्त तरल पदार्थ लेते रहें, क्योंकि बुखार के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए साफ पानी, सूप और अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ लेते रहें। यदि उल्टी या दस्त भी हो रही हो तो शरीर में पानी और लवण की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसी स्थिति में ORS का उपयोग स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के अनुसार दिया जा सकता है। हल्का और पौष्टिक भोजन ले, यानी कि भूख कम होने पर भी शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए अपनी सहनशीलता के अनुसार हल्का और पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है। दाल, खिचड़ी, दलिया, फल, ये सभी संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं। इसी के साथ श्रोता साथियों, बुखार कितना है, कब से है और साथ में कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: और इन सारी स्थिति को हमें डॉक्टर को भी बताना होगा ताकि सही समय पर सही इलाज हमारा हो पाए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं श्रोता साथियों कि बुखार के दौरान हमारे शरीर की ऊर्जा है और पोषण है वो कम हो जाता है और इनकी आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए श्रोता साथियों, इस समय हमें खाना है वो बिल्कुल बंद नहीं करना है। यदि भूख कम लग रही है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में श्रोता साथियों आप भोजन खा सकते हैं। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि हमारे श्रोता साथी हैं वो दाल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं और हल्का भोजन है श्रोता साथियों वो हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देने में मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों इस टाइम पे हमें ज्यादा तला भुना है वो भी नहीं खाना है और अत्यधिक मसालेदार जो खाना होता है उससे भी बचना है। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि अगर हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमारी तबीयत है वो और ज्यादा खराब हो सकती है और बुखार है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आपको वायरल बुखार होता है तो सबसे पहले खाने का ध्यान हमें रखना है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे कि बारिश के मौसम के दौरान मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा इस समय बढ़ जाता है, इसलिए बुखार होने पर केवल यह मान लेना कि यह वायरल है ये बात सोचना सही नहीं है। यदि बुखार के साथ तेज बदन दर्द, सिर दर्द, उल्टी, अत्यधिक कमजोरी, खून आने जैसे लक्षण हो या क्षेत्र में मच्छर जनित बीमारी का प्रकोप हो तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, पानी की टंकियां और बर्तनों को ढककर रखें और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं। बच्चों में बुखार आने पर माता पिता को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बच्चे को पर्याप्त तरल पदार्थ दें, आराम करवाएं, उनकी स्थिति पर नजर रखें। बच्चे को दवा देते समय उम्र और वजन की अनुसार सही खुराक बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी दवा देना उचित नहीं है। इसी तरह बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों में संक्रमण का असर अधिक हो सकता है। ऐसे लोगों में लक्षण बढ़ने पर जल्दी चिकित्सकीय सलाह लेना बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ,
0: श्रोता साथियों, वायरल संक्रमण से पूरी तरह बचाव हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन संक्रमण का जोखिम कम करने के लिए हम कई छोटी छोटी आदतों को अपना सकते हैं, जैसे हाथ साफ रखें, खांसते और छींकते समय मुंह नाक को ढक के रखें, बीमार होने पर दूसरों के साथ अनावश्यक नजदीकी न बनाएं, साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग करें, भोजन को ढककर रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें, घर के कमरों में उचित वेंटिलेशन रखें, मच्छरों से बचाव करें और घर के आसपास पानी जमा न होने दें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ बात करें परिवार की भूमिका की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बीमार व्यक्ति को केवल दवा की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि परिवार के सहयोग की भी जरूरत होती है।
0: जी जी।
1: उसे आराम करने दे, समय पर पानी दे, भोजन दे, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां हैं वो भी समय समय पर दे। अंजलि जी, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे बच्चे हैं उनका ध्यान रखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अक्सर श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे घर के बच्चे हैं वो दवाई नहीं खाते हैं टाइम पर और ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए इसमें परिवार की भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर परिवार अच्छे से उनका ध्यान रखे और उन्हें उचित दूरी बनाने के लिए समझाएं कि ये वायरल बुखार है, ये दूसरे लोगों में भी फैल सकता है, हमें इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब अगर बच्चे और बुजुर्गों को समझाया जाए श्रोता साथियों, तो हम देखते हैं कि इस परेशानी से ज्यादातर वो बच सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आज की बातचीत से हमने जाना कि वायरल बुखार के दौरान घबराने की बजाय सही जानकारी और सावधानी जरूरी है। बुखार शरीर में संक्रमण का संकेत हो सकता है, लेकिन हर बुखार को वायरल मान लेना ठीक नहीं है। आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ, पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और जरूरत पड़ने पर समय पर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। ये छोटी छोटी बातें बीमारी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे जरूरी बात कि अपने मन से एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं शुरू न करें और लगातार या गंभीर लक्षण होने पर स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। याद रखिए कि बुखार को न करें अंदाज, सही समय पर जांच और इलाज, साफ सफाई को बनाएं अपनी पहचान, स्वस्थ रहें परिवार और पूरा गांव।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें

0: जा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर और स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहां साथियों हम बात करते हैं एक नई सोच और एक नई उड़ान को लेकर जो हमारे जीवन को बदल देती है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। आज भी कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर मैं जुड़ चुकी हूँ। साथियों, जिस विषय को लेकर आज मैं कार्यक्रम में आपसे बात करने वाली हूँ वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसी आदत को लेकर बातचीत होगी जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है, और वो है सीखते रहने की आदत। साथियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग हर दिन बेहतर होते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर चुनौती को पार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी सफलता को प्राप्त करने के लिए ढेर सारे संघर्ष करने पड़ते हैं और परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के सामने परिस्थितियाँ ऐसे आती हैं कि वे उन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इन्हीं दो पहलुओं को लेकर दोस्तों आपसे बातचीत करूंगी और जानेंगे हम कि सीखते रहने की आदत होती क्या है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो दोस्तों पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में, फिर हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम में बातचीत के सफर की ओर। तो बने रहिएगा आप कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको विषय तो बता ही दिया था कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं सीखते रहने की आदत को लेकर। साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ये गौर किया है कि कुछ लोग हर दिन बेहतर होते जाते हैं, हर चुनौती को पार कर लेते हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, वे कभी सीखना नहीं बंद करते। सोचिए साथियों कि अगर हम वही जानते रहे जो हम आज जानते हैं, तो क्या हम कल बेहतर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है साथियों। लेकिन सीखना है या नहीं सीखना, ये हम पर निर्भर करता है। तो श्रोताओं, अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप भी हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम कार्यक्रम में जानने वाले हैं कि हम सीखते रहने की आदत कैसे बना सकते हैं, कैसे हम हर दिन खुद को कुछ नया सिखाएंगे और कैसे खुद को हम हर दिन बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे प्रयास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम के सफर की सीखते रहने की आदत को लेकर, क्योंकि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें खुद से छोटा सा वादा जरूर करेंगे कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा। तो साथियों, आपसे कहना चाहूंगी कि सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, ये जीवन जीने का एक तरीका होता है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, हर गलती हमें एक नया पाठ पढ़ाती है साथियों, और हर इंसान हमें एक नई सीख देता है। हम देख सकते हैं कि जो सीखना बंद नहीं करते, वे बढ़ना बंद भी नहीं करते। तो आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि सीखते रहना एक बहुत अच्छी आदत होती है। अब प्रश्न ये उठता है साथियों कि सीखते रहने की आदत को हम अपने अंदर विकसित कैसे करें। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की जिज्ञासा को जगाना है। साथियों, आप सवाल पूछिए खुद से, क्यों और कैसे, यानी कि हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिज्ञासा ही सीखने की पहली सीढ़ी होती है। इसी के साथ रोज कुछ नया सीखने का संकल्प आप ले दोस्तों, क्योंकि हर दिन आप अगर खुद के लिए 10-15 मिनट निकाल ले दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस समय में आप कुछ नई जानकारी ले सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं या फिर कोई नया शब्द भी जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, छोटी छोटी सीखें ही बड़ा बदलाव लेकर आती है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों को पढ़ने की आदत भी होती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी आदत है, इसे भी आप अपना सकते हैं साथियों, क्योंकि जो किताबें होती हैं वो हमारी सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। इसमें आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है साथियों, और पढ़ने से हम खुद को बेहतर भी बना सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो जैसा कि दोस्तों, मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता ही रही हूँ कि सीखने की आदत को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके हम जान रहे हैं, तो ये बातें आगे भी जारी रहेंगी। आगे भी कुछ तरीके हम जानेंगे साथियों, जिससे हम हमारी सीखने की आदत को विकसित कर सकते हैं। तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से विषय हमारा चल रहा है कि हम सीखने की आदत कैसे अपना सकते हैं, और गीत से पहले कुछ बातें रही थी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में सीखने की आदत को अपना सकते हैं। और गीत से पहले जैसा कि हम जान रहे थे कि सीखने की आदत को हम अपने जीवन शैली में विकसित कैसे करें, दोस्तों हमने जाना था कि हमें पढ़ने की आदत को अपनाना चाहिए, रोज कुछ नया सीखने का संकल्प हमें लेना चाहिए और खुद के अंदर की जिज्ञासा को हमें जगाना है। इसी के बाद दोस्तों अगर बात करें गलतियों से सीखने की, तो गलती होना बुरा नहीं होता साथियों, गलती से ना सीखना बुरा होता है। हर गलती में आप खुद से ये पूछिए कि मैं इस गलती से क्या सीख सकता हूँ। इससे दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को वापस आप दोबारा न करें, ये भी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगली बार अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को आप अपनी सीख माने। इसी के आगे दोस्तों नए अनुभव लेना भी जरूरी है, क्योंकि नए लोगों से मिलने से हम नई नई चीजें सीख पाते हैं। इसमें आप नई नई जगहों पर जा सकते हैं और नई नई चीजें ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव हमारी असली शिक्षा होती है। तो आप ये उपाय भी अपना सकते हैं, इससे भी हमारा सीखने की कला विकसित हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों सीखी हुई चीजों को लागू करना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, उसे जीवन में लागू करना भी उतना ही जरूरी होता है। हम देखते हैं कि कुछ नया सीखने के ढेर सारे फायदे होते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, नए नए अवसर हमें मिलते हैं, जीवन में उत्साह बना रहता है साथियों। इसलिए आज से ही आप सीखने की आदत को अपनाएं, क्योंकि दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। हम अगर वर्तमान में देखें तो आज के समय में जानकारियां हमारे पास बहुत है, लेकिन सीखने की इच्छा हमारे अंदर कम होती जा रही है। हम मोबाइल सोशल मीडिया में बहुत व्यस्त रहने लगे हैं साथियों, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए सीखने की आदत को अपनाना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। सोचिए साथियों कि अगर एक पेड़ जो है वो बढ़ना बंद कर दे तो क्या होगा, वो सूख जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम इंसान भी सीखना बंद कर देंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। इसलिए सीखना कोई काम नहीं है साथियों, यह तो हमारी एक जीवन शैली है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो सीखता है वही जीतता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखें कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। आज से ही श्रोता साथियों आप खुद से एक वादा कीजिए कि हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे, हर गलती पर आप कुछ सीखेंगे और खुद को हर दिन बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों सीखना कभी बंद नहीं होता और जिंदगी सिखाना हमें कभी बंद नहीं करती। इसलिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए साथियों, क्योंकि दोस्तों आज से ही आप खुद से ये वादा करेंगे कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहूंगा। याद रखिए साथियों, सीखना कभी उम्र का मोहताज नहीं होता, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। दोस्तों अगर जिंदगी आपको बार बार गिरा रही है तो शायद वो आपको कुछ नया सिखाना चाहती है। इसलिए गिरिए, संभलिए और हर बार कुछ नया सीखिए, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो हर दिन सीखता है वह एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। तो श्रोताओं आज से ही सीखना अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि बातें जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी साथियों एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के साथ ही आज के हमारी प्रेरणादायी बातें और कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
2: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का